जब भय बूढ़े और जब धन ढूंढे मिले कामार। बाल भय भूरे गर्व भय चूरे अब का करे लाल। बाल भय भूरे गर्व भव चूरे अब का करे लाल। खाल सुकड़ गई हड्डी में।

अरे सोची नैया जवानी पन में।

गरब करे ते पोतनान फेरे देख लाए पान कारे भजन।

ब्रज तारे भजन करो हरे जगत ज।

0: शुभ कल बदलती जलवायु के लिए तैयार हम।
1: कार्यक्रम शुभ कल सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त वर्षा,
2: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष। साथियों, कार्यक्रम लेकर आए हैं जिसका नाम है शुभ कल कार्यक्रम।
1: यह कार्यक्रम रेडियो बुंदेलखंड और लोरियल फाउंडेशन के सहयोग से रेडियो बुंदेलखंड पर प्रसारित किया जा रहा है,
2: और ये श्रृंखला का 11वां कार्यक्रम आप लोगों के बीच हम लोग लेकर आए हैं। साथियों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत को कम होती ही है, इससे साथ ही कृषक भाइयों को आय अधिक प्राप्त होती है, तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार की इस स्पर्धा में जैविक उत्पादन अधिक खरे उतरते हैं, जिसके फलस्वरूप सामान्य उत्पादन की अपेक्षा कृषक भाई अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान साथी कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे से होंगे। और साथियों, पिछले कार्यक्रम में हमने जाना था कि क्या कारण है कि लोग जैविक खेती क्यों नहीं करते हैं, वो आंकड़ों पर हमने एक नजर डाली थी। साथ साथ में हमने समुदाय से बात की थी, और विषय विशेषज्ञ द्वारा हमने जाना था कि लोग जैविक खेती करने में क्यों हिचकिचाते हैं। बहुत सारी बातें निकल के आई थी, और आज के हमारे इस कार्यक्रम में आज बात करने जा रहे हैं कि जैविक खेती करने से हमें क्या लाभ है।
1: हमारे इन कार्यक्रमों के बनाने का उद्देश्य भी यही है, कैसे हमारे किसानों की दिशा और दशा में सुधार हो सके। इसके लिए हमारे किसान साथियों जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है, खास तौर पर महिला किसान।
2: वर्षा, हमारे किसानों की दिशा और दशा तभी सुधरेगी जब हमारे किसान साथी जागरूक होंगे, और जागरूक तभी होंगे जब उनके पास उस विषय की अच्छी तरह से जानकारी हो, और जानकारी तभी होगी जब रेडियो बुंदेलखंड पर इन कार्यक्रमों को सुनेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम भी उन किसान साथियों के लिए बना रहे हैं, और खास तौर पर उन महिलाओं के लिए जो दिन रात अपने परिवार के साथ खेतों पर मेहनत करती हैं।
1: अरे मनीष भैया, इनको समझाने के लिए हमारी बैरो भौजी ही काफी है, क्योंकि उन्होंने अपने लालाजू को भी समझाया। आइए चलते हैं बैरो भौजी के पास।

0: लालाजू, ओ लालाजू।
1: हाँ भाजी, बता क्या बात है?
0: क्या बात है लालाजू, आप तो बड़ी आराम से बोल रहे।
1: ले भाजी, अब तो नेक आराम से बोलो, सो भाई बात।
0: क्या कह रहे हैं, नेक कठे आँखें बोलो, सो भाई बात।
1: अरे भाजी, तनक हमने कही कि आज आराम से बतिया लिए भाजी से, वैसे तो लड़त रहते अपन।
0: अरे लालाजू, मैं जाके अभी आई थी कि नेक तुम मेरे संगे चलू।
1: तुम्हारे संगे चलो?
0: हाँ।
1: काहे के लाने?
0: मैं हारे चलू ने।
1: हारे चलो?
0: हाँ।
1: ऐसो काहे थे हारे कि हम हारे चले थे?
0: अरे लालाजू, मैं कह रही तो समझ लो, जरूरी काम है मुझे।
1: अरे भौजी, अब हम पढ़ रहे।
0: पढ़ रहे बाद में पढ़ ले, जो आखने मुझे जरूरी काम है वो हारे तुमसे मिल रहे हैं वो।
1: ऐसी क्या बात है, बता ही बता दे तो।
0: क्या कह रहे लालाजू, नहीं चल रहा है?
1: अरे जा कह रहा भौजी, ऐसी क्या बात है, इतनी बता दे, हारे जावे की क्या जरूरत है?
0: अरे लालाजू, अब तुम तो इतने पढ़े लिखे होंगे, अच्छी सी बता दूं ना, मैं का डाल लूं ई खेतन में? मुझे तो समझ में नहीं आ रही, मैं जे दवाई ले आऊंगी, लेकिन इनसे का कोती मुझे कछु फायदा थोड़ी ना पड़ रहा है गो। और मैं सोच रही होंगी कि अगर तुम्हें कोनो दवाई आत हुई तो तुम बता दो।
1: भौजी देखो, अब तुम हमसे तो ज्यादा जानते ही हो, काय में लगी हमारा ना के भी।
0: अरे लालाजू, फिर भी मैंने कही तुम पढ़े लिखे होंगे तो मैं तुमसे पूछ लेती होंगी, तुम्हें कछु नहीं आउट का?
1: अरे आउट तो है ना, लेकिन अब मैं खेती बाड़ी में थोड़ी जाना थी बात है।
0: अच्छा, तो मैं तुम्हारी, चलो मैं तुम्हारी खेती देखी, आज तुम्हारी कैसी हैगी?
1: हाँ हमारी देखे, हम तो दवाई दीजिए अपनी, ये चल रही है आजकल भी
0: दवाई देते ही।
1: चलो देखे यहाँ तो।
0: चलो चलो, तो पहले तुम्हारी खेती देखे आवे, फिर मैं अपनी देखूँ।
1: तो देख भौजी, देख जा बीबी आप आसो की अपनी फसल, लेकिन मैं तो किसानी से हार ही गया, लेकिन पढ़े जाने तो खेती करनी है, तो जिनमें देखो जी आजकल की दवाई चल रही है अपनी रासायनिक दवाई, यही देती मैं तो जी दुकान से ले लेके।
0: का कह रहे लालाजू, मर भी जाने या तो जा खेती ऊपर से प्राण खा रही?
1: मर भी नहीं, पढ़ भी जाने आओ तो ही। हाँ। पढ़ भी जाने तो, और खेती भी करनी है संगे संगे, देखो अब किसानी को गाँव गाड़ो को काम है तो सब करनी है।
0: हाँ, वो तो ये नहीं है कि लालाजू मैं जा कह रही, तुम कहाँ डाल रहे थे? देखो तुझे भटन में कैसे कीड़ा मीरा सो लग रहा है वो, और का कहते ये नहीं रुखन आने से लग रहा है, कहाँ डाल रहे तुम?
1: अरे भौजी, दवाई तो मैंने मुलकन दी अपनी बाजार से लिया लिया के।
0: लालाजू, मैं तो जा से आई थी देखन, मैंने कही कि तुम आई अच्छी हो, जो उमदा को लालाजू अच्छी दवाई डाल रहा हूँ, मैं जाई वहाँ ने लालाजू की फसल तो देखे कैसी का हैगी।
1: अरे भौजी, तो ऐसी बातें कर रही, कौन मेरे घर है बन नहीं दवाई, अब मैं तो बाजार से ले आता ही था, तुम

0: जाने का करा था जुमून में तुम्हें देखे हूँ कैसी है तुम ज्यादा वो बता रही तो।
1: अरे चलो लाला जी तो तुम्हारी से तो अच्छी मेज चाहिएगी। मैं तो जबकि देसी दवाइयों को इस्तेमाल करे थे मैं तो बड़े वास आई थी। अरे मेरे लाला जी की अच्छी उम्दा हो जाए के भी पढ़े लिखे हैं अच्छी दवाई ले आते।
0: अरे भौजी अब दुकान पे मिल जाता अपनी ये सब चीजें तो फिर काय को दिक्कत करो जैसे बढ़िया दवाई मिला सिंह में दवाई नहीं मिला दुकान पे मशीन से खिंच दू
1: रासायनिक
0: और
1: बाकी छतो
0: भाई तो लिया
1: इतनी अच्छी कही वो हर लगे ना फटकर ही रंग चोखो हो जाए।
0: भौजी तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे ते अपने घर ही बनाते हो दवाई।
1: हाँ उसमें तो बनाते ही हूँ मामे कहा सके वो
0: कहा घरे बना।
1: हाँ जो जैविक दवाई है वो तो मैं अपने घरे बनाऊ तो और अपनी बैगन में और चाहे जो सी फसल हो मैं अपनी उनमें डालत होंगी।
0: कैसी काय को मस्करी कर रही भौजी
1: कहा कह रहे लाला जू काय को मस्करी कर रही
0: और
1: मस्करी दिखा रही।
0: ओके तो रही घर बना उसका दवाई बना वो हंसी के लेगा।
1: हाँ लाला जू मैं इनसे उम्दा दवाई बनाते रासायनिक दवाई जिनसे मैं जैविक दवाई बहुत अच्छी बना लेती होंगी।
0: अब तो भाजी चला ही नहीं आए थे यार देखो
2: कैसी चलो तो देख लो मेरी फसल कैसी उम्दा लहलहा रही।
1: और ना ये कहो कीड़ा लगो कीड़ा के लाने और जाना बहुत हो तो मैं मुझे तो विशेषक बुला लेते हैं तो उनसे पूछा की कैसी देसी दवाई कैसे बनाऊ मैं जो अपनी चीजें है प्राकृतिक ईंधन से कैसे दवाई बनाऊ।
0: अच्छा
1: हाँ
0: तो अब तो चला ही नहीं आए तो हारे
1: चलो देखो अब देखो लाला जी जो तो लगो मेरे बैगन और जी अभी मैंने टमाटर की पौधे सुबह लगा दी।
0: वो भौजी तेरी फसल तो सांसों देख भी लाखेगी।
1: कहा कह रहे भौजी तेरी फसल तो बड़ी उम्दा है
0: और मेरी फसल से तो बहुत ही उम्दा हैगी।
1: हाँ तो लाला जी मैं तो यही सोच रही थी की तुम्हारी उम्दा हो जाए लेकिन मैं तो खुदा बड़ी खुश हो रही की मेरी अच्छी है। मैं तो घरे बना था अपनी सब
0: लेकिन भौजी जी टपक जाए भी मटका धरे जे का धरे चार पाँच।
1: कहा कह रहे लाला जी टपक जाए लोटा धरे
0: लोटा नहीं भी मटका धरे बट तू टपक जाए।
1: हाओ लाला जी मैं मटकन से मैं मटका खाद बनाता
0: हूँ। मटका खाद
1: हाओ
0: वह कैसी बनाता
1: ले लाला जी तुम्हें जो ही पता नहीं है मैं अपनी सब देसी खाद डालता हूँ उनमें जिसे उनमें उर्वरक जो अपनी खेत की जो उर्वरक शक्ति है और नमी है वह हमेशा बनी रहते और पैदावार भी अच्छी होते।
0: हाओ मैंने पढ़ा तो है ना तो किताबन में मटका खाद जी सब जैविक खादे बनी।
2: अच्छा
0: लेकिन तो मैंने जो सोची नहीं है कि खुद बना सका।
1: अरे वो तो है ही बना सका थे तो लाला जी अगली बार ध्यान करने कि दवाई घरे ही बनाने और घरे ही खाद बनाने उन्हीं को इस्तेमाल करने।
0: अब तो भौजी मैं तू जरूर सीख भी आऊँ दवाई बना
1: बिल्कुल तो आज जो ट्रेनिंग लेने।

0: यकीनन सुना आपने बैरो भौजी को, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से जैविक खेती के बारे में बताया कि अगर हमारे खेतों में कोई भी समस्या होती है तो उसके निजात पाने के लिए हम रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल ना करके घर से बनी हुई जो खाद होती है, जो दवाई होती है, जो हम नेचुरल तरीके से बनाते हैं, उनको हम अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं और एक बेहतर पैदावार पैदा कर सकते हैं।
1: भैरव भौजी ने कितने अच्छे तरीके से जैविक खेती के बारे में बड़े अच्छे तरीके से समझाया और जो भी गिला शिकवा थे वो भी हमें दूर हुए। लेकिन हमें यहाँ पर रुकना नहीं है, क्योंकि यहाँ तक भैरव भौजी तक सवाल सीमित नहीं है, यहाँ पर सवाल आते हैं हमारे किसान साथियों के, क्योंकि किसान साथी जैविक खेती इस बुंदेलखंड क्षेत्र में क्यों नहीं करते हैं, उनके पास आपको ले चलते हैं, उनसे जानते हैं। क्योंकि आजकल हम ये देख रहे हैं कि किसान अपने खेती की लागत इतनी ज्यादा लगाता है और उसके लिए कर्ज करता है, कर्ज होने के बाद साथ साथ में आज हम बैंकों की स्थिति देखते हैं तब पता चलता है कि हमारे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो डिफॉल्टर हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लागत भी नहीं निकलती है पूरे साल भर खेती करने के बाद। तो ये सारी पीड़ाओं को हम दूर करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, जैविक की ओर लोगों को ध्यान आकर्षित करा रहे हैं। लेकिन अब सबसे पहले हम अपने किसान साथियों के पास आपको ले चलते हैं और जानते हैं कि जैविक खेती क्या है, लेकिन कुछ विराम के बाद।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी आरजे दोस्त आराधना और बात करेंगे आज जैविक खेती क्या है। ऐसी खेती जिसमें दीर्घकालीन व स्थिर उपज प्राप्त करने के लिए कारखानों में निर्मित रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशियों व खरपतवार नाशियों तथा वृद्धि नियंत्रक का प्रयोग ना करते हुए जीवाश्म युक्त खादों का प्रयोग किया जाता है तथा मृदा एवं पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाता है, उसे जैविक खेती कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में।
3: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
4: ब्रजनंदन पाल कैना से।
1: ब्रजनंदन जी, आपने जैविक खेती के बारे में तो सुना होगा, तो जैविक खेती से लाभ क्या है?
4: जैविक खेती से लाभ यही है कि मतलब कुछ इनकम ज्यादा आती है उसमें, अपन को फायदा, जैसे मूंगफली है, मूंगफली उखाड़ी उसको थोड़ा बेचने के कंपनी, तो इसी के बारे में थोड़ी।
1: अच्छा, तो आपको कुल मिला के ज्यादा मतलब इसके बारे में जानकारी नहीं है। एक चीज और जानना चाह रहे हैं कि आपके हिसाब से क्या लगता है कि जैविक खेती करके अपनी खेती की लागत को हम कम कर सकते हैं?
4: नहीं कर सकते।
1: चलिए, और आय को हम बढ़ा सकते हैं?
4: आय देखो, महंगाई तो बढ़ रही है, जमीन के ऊपर है, ऐसी तो थोड़ी ना बढ़ेगी, कुछ अलग तरीके की खेती करें तभी तो आय बढ़ेगी।
1: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप अपना परिचय दीजिए।
5: सुरेंद्र पाल कहना।
1: अच्छा सुरेंद्र पाल जी, आप जैविक खेती के बारे में जानते होंगे, तो जैविक खेती से लाभ क्या है आपके हिसाब से, क्या लगता है लाभ क्या है?
5: हाल की स्थिति में तो जैसे मूंगफली हो गई, तिली हो गए, उड़द हो गए, चना हो गए, जैसे मूंगफली हो गई, तिली हो गई, सोयाबीन हो गया, उड़दा हो गया, मूंग हो गई,
1: जी जैविक खेती के उत्पादन।
5: हाँ हाँ, तो ये उत्पादन है, तो अगर इससे तो ये है, अगर मान लो 2-4 बीघा जमीन है किसी के पास, तो इस चीज से कोई लाभ नहीं है।
1: अच्छा, जैविक खेती करके हम अपनी खेती की लागत को कम कर सकते हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है?
5: अपने हिसाब से ये है कि जैसे वो अपने हाथ में तो है नहीं, अगर बरसात सही तरीके से अगर हो गई तो अपन लाभ ले सकते हैं। अगर बरसात नहीं हुई, किसी के कुएं में पानी नहीं है, कुछ लोग तो ऐसे भी है, मान लो हम या आप ही हो गए कि भगवान के भरोसे रहते, अगर अभी पानी खुल गया तो मूंगफली में कुछ नहीं है, अगर बरस गया तो सब।
1: एक वर्ष आखिरी सवाल है कि जैविक खेती करके हम अपनी आय को कैसे बढ़ा सकते हैं आपके हिसाब से, चूंकि आप खेती करते हैं?
5: खेती करके मान लो ऐसे ही बढ़ा सकते हैं कि अगर कुआ अंदर पानी है तो टाइम से बो दिया, टाइम से पानी दे दिया और टाइम से खाद बीज लगा दिए तो अच्छी फसल उपजाऊगी, तो अपन उससे लाभ ले सकते हैं।
1: चलिए, बहुत अच्छा लगा लाला राम जी आपसे बात करके, धन्यवाद।
6: हमारा नाम है रईस यादव, लिधौरा निवाड़ी विधानसभा से बोल रहे हैं।
1: अच्छा रईस जी, हम जानना चाह रहे हैं कि जैविक खेती जो होती है उससे करने से क्या लाभ है?
6: उससे ये लाभ है कि सबसे जल्दी पौधा अपना होता है, जो जो भटा है, टमाटर है, आलू है, जल्दी तैयार हो जाते हैं उससे। अच्छा, जो गोबर खाद सा है, गोबर खाद का मतलब जैविक खाद में थोड़ा मतलब बीमारी टाइप का तत्व रहता है, इसमें निर्दोखल रहता है मतलब। गोबर खाद, जिससे आदमी बीमार कम पड़ते हैं।
1: अच्छा, आपको रही जी क्या लगता है कि जैविक खेती करके खेती की लागत को हम कम कर सकते हैं आपके हिसाब से?
6: धीरे धीरे होगा। तो जैसे अपन को थोड़ी मात्रा में कम खाद दो इस साल, फिर पर साल अगले कम दो, मतलब गोबर जो मान है गौ माता का, ये ज्यादा मात्रा में देते जाओ, इसके बाद जो जैविक खाद देना बंद हो जाता है और फसल होने लगती है। फिर
1: अच्छा, जैविक
6: वो भी
1: खेती खेती करके अपनी आय को हम बढ़ा सकते हैं क्या, आपके हिसाब से क्या लगता है?
6: हाँ, जैविक मतलब खाद से बढ़ती है वाला है,
1: आय बढ़ती है? कैसे
6: आय
1: बढ़ती
6: बढ़ती
1: है?
6: है उससे, मतलब ऐसे है कि जैविक खाद अच्छी जैसी मात्रा में हर गुड़ाई जो खाद छिड़कते रहो, बल
1: अच्छा,
6: पानी देते रहो, बढ़िया फल फूल बढ़िया तुराई चलेगी उसकी।
1: धन्यवाद भाई साहब।
7: ब्रज किशोर कुशवाहा।
1: अच्छा ब्रज किशोर, हम एक चीज जानना चाह रहे हैं, जो जैविक खेती होती है आपके हिसाब से उससे को करने से क्या लाभ है?
7: हमें पता नहीं है सर,
1: जानकारी नहीं है जैविक खेती की?
7: नहीं है जानकारी सर।
1: अच्छा, जैविक खेती करके लागत को कम कर सकते हैं अपन लोग?
7: अब जी हमें पता नहीं है सर।
1: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
0: साथियों, अभी आपने सुना कुछ किसानों की बातचीत को, जिनकी बातों से बिल्कुल पता चल रहा था कि कुछ किसान साथी हमारे ऐसे हैं जिनको जैविक खेती के बारे में पता ही नहीं है कि आखिर जैविक खेती क्या होती है। लेकिन कुछ किसान साथी ऐसे हैं जिनको पता तो है कि जैविक खेती क्या होती है, लेकिन करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जैविक को करने से हमारी फसल सही नहीं होगी या हमारी मार्केट में वैल्यू कम हो जाएगी। उनके अपने मन में जो भ्रांतियां चल रही थी, आइए इन्हीं सब बातों को लेकर हम आपको सीधा ले चलते हैं विषय विशेषज्ञ के पास, लेकिन एक गीत सुनने के बाद।

जो संदेश सुन लो भैया जो संदेश खुशहाल बनो रे अपनो देश खुशहाल बनो रे।

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम में। और साथियों, आप अभी आपने कृषि से जुड़ा इस गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपको सीधा ले चलते हैं हमारे विषय विशेषज्ञ के पास और जानते हैं जैविक खेती के उन सारे किसानों के जो सवाल थे, उन सवालों के जवाबों को।
1: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल, वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन, वृक्ष लगाइए जीवन बचाओ।
0: का सर मानना क्या है कि किसानों को जैविक खेती अगर इस क्षेत्र में देखा जाए, सर मध्य प्रदेश में कुछ हिस्से ऐसे जहाँ पर लोग जैविक खेती करना ही नहीं चाहते, जब हम किसानों से बात करी वो नहीं करना चाहते हैं, तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: देखिए, एक बहुत वैसी बात हम आपको बता रहे हैं कि भारत ही नहीं पूरा विश्व आने वाले समय में जो खाद्यान्न संकट से गुजरने वाला है, 2050 तक पूरे विश्व की आबादी लगभग 10 अरब हो जाएगी, उसमें भारत की आबादी लगभग 1 अरब 70 करोड़ के आसपास हो जाएगी। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने होगी कि हमको उत्पादन शक्ति बढ़ाना होगा और ताकि हम सभी लोगों को खाना उपलब्ध करा सकें। और जहां तक इस कृषि पद्धति की बात है तो इसे तो अपनाना ही होगा और इसके लिए उन्हें सहजता से उनके साथ संपर्क करके जो विशेषज्ञ लोग होंगे, कृषि विशेषज्ञ लोग होंगे, और उनसे मिलना होगा और उनको इसके जो फायदे हैं वो बताना होगा। तो जो स्थायी कृषि है, आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, क्योंकि इसका इसके कई नाम से जानते हैं जाना जाता है, जैसे सतत खेती, पोषणीय खेती, प्राकृतिक खेती, परमा कल्चर, तो इसमें ये सेट ही है एक तरह से, आप देखिए ये पद्धति का सेट है, तो जो कि 3-4 शर्तों को पूरा करता है कि पर्यावरण का सम्मान करेगा, ये सम्मान होगा इसमें, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा हो जाएगी, किसानों का उचित और पर्याप्त आय भी सुनिश्चित होगा इसमें।
0: बिल्कुल।
2: और चूंकि वर्तमान में भू स्तर जो जल का स्तर है वो गिरता जा रहा, ऑर्गेनिक कार्बन की भी मात्रा कम होती जा रही है, और भारत की जो कृषि पद्धति है या खेती हो रही है उसमें हमेशा से नाइट्रोजन और ह्यूमस की जो कमी है वो हमेशा से रही है, तो इसकी पूर्ति करने के लिए लोग रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके विकल्प के तौर पे उन्हें प्राकृतिक खेती, ये अस्थाई कृषि अपनानी होगी और उसके फायदे उनको दिखेंगे। और चूंकि तुरंत उसका फायदा नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ समय बाद निरंतर वो 3-4 साल तक अगर उसको प्रैक्टिस में ले आएंगे फिर उसको उनका फायदा दिखने लगेगा।
0: सर आपका मानना क्या है कि जब हम जैविक खेती की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर रासायनिक खेती की बात करते हैं, दोनों में अंतर क्या होता है आपके हिसाब से?
2: जी देखिए, रासायनिक खेती तो रासायनिक खेती में हमेशा जो संश्लेषित या कह सकते हैं हमेशा रसायनों का प्रयोग करके जो खाद बनाई जाती है और कीटनाशक बनाए जाते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, उनके प्रयोग से आप अंततः देखिए मनुष्य को ही नुकसान हो रहा है। आप बहुत सामान्य तरीके से इसको समझा जा सकता है कि जो यूरिया, डीएपी, एमओपी, ये सारे जो रासायनिक खाद है उनको डाला जा रहा खेत में, हर साल हर फसल के दौरान डाला जा रहा है, तो वो धीरे धीरे उसकी जो अन्य जो नकारात्मक तत्व है उसमें वो मिट्टी में बढ़ते चले जाते हैं। और जब कोई पौधा हम लगाते हैं, खेती करते हैं, तो उस पौधे की जड़ में, उसके तने में, उसके फल में, उसके फूल में, सभी में वो अवशोषित हो जाता है। और उसके बाद जब हम उसको, अगर कोई जानवर भी उसको खाता है और उसके शरीर में जाता है, उसका दूध हम पीते हैं, तो उसमें भी जो नुकसानदायक पदार्थ होते हैं वो हमें मिलते, तो हमारे शरीर में आ जाता है। हम डायरेक्ट जब सीधे तौर पे हम लोग उसका उपभोग करते हैं तो हमारे शरीर में वो नुकसानदायक पदार्थ आ जाते हैं। ऐसे धीरे धीरे इन तत्वों का सांद्रण हमारे शरीर में बढ़ जाता है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं। ऐसे जो जैसे कुछ भारी धातुएं हैं, पानी, मृदा, वायु, सभी प्रदूषित होते चले जा रहे हैं इन कीटनाशकों और रासायनिक पदार्थों के अंधाधुंध प्रयोग से। इस तरह से जो सांद्रण बढ़ता है, चूंकि वो पता नहीं चलता है, लेकिन ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है खाना पीना, तो ऐसे में हमारे शरीर में इसकी सांद्रता बढ़ जाती है। इसको हम बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं, एक वैज्ञानिक टर्म है। तो

0: इसमें पता नहीं चलता है, लेकिन वो धीरे धीरे शरीर में एक स्तर तक पहुंच जाता है, और जब एक स्तर से ऊपर हो जाता है तो उससे नकारात्मक प्रभाव उसके दिखने लगते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं, जो
1: जी
0: इसमें आपको समाज में बहुत आसानी से दिख जा रहा है। सभी लोग किसी न किसी समस्या से ग्रसित होते चले जा रहे हैं खान पान की वजह से।
1: जी अगर सर, अगर फायदे की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो सर इसका जैविक खेती का फायदा क्या है? क्योंकि अभी अभी रासायनिक जो हम लोग खाद डालते हैं उसका हमने नुकसान बताया है, फायदा क्या है जैविक खेती का?
0: जी, इसके अनेक लाभ हैं। और उसमें सबसे पहले आप ये देखा जाएगा कि मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हो जाएगी,
1: जी
0: उसमें जो पोषक तत्व है उसका संतुलन लंबे समय तक बना रहेगा,
1: जी
0: और जब इनका संतुलन लंबे समय तक बना रहेगा तो जो लाभदायक जीव होगी,
1: जी
0: और ऐसे टिकाऊ खेती में फसल का उत्पादन भी ज्यादा होगा और पशुओं का पालन पोषण भी अच्छे से किया जा सकता है, क्योंकि हानिकारक रसायन और कीटनाशक के प्रयोग से पर्यावरण पे अनेक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं, और जबकि उसके विपरीत जब अब टिकाऊ और ये प्राकृतिक खेती की जाएगी तो उसका कोई ऐसा नुकसान नहीं दिखेगा। और टिकाऊ खेती करने पे देखिए लागत भी बहुत कम आती है
1: जी सर
0: और पर्यावरण में प्रदूषण तो कम होगा ही,
1: जी
0: साथ
1: सर
0: साथ उत्पादन के साथ उच्च गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ का भी उत्पादन होगा। और अंत में मैं यही कहूंगा कि
1: जी
0: अस्थायी कृषि लाभदायक होना चाहिए।
1: सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आशा है सर हमारे किसान साथियों के जो सवाल थे उन सवालों के उनको अच्छे तरीके से जो आपने का जवाब जो दिया है का सर बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सक्रिय श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपके आरजे वर्षा, और आज हम बात करने वाले हैं जैविक खेती से होने वाले लाभ क्या क्या हैं। जी हां, भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि हो जाती है, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है, रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है, बाजार में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में भी वृद्धि होती है। जी हाँ साथियों, तो जाना कि जैविक खेती करने से कितने सारे लाभ होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए बाय बाय।
3: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
1: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम को। और साथियों, अभी हमने जाना हमारे विषय विशेषज्ञ संजय कुमार जी से हमारे श्रोता साथियों और साथ साथ में किसान साथियों के जो सवाल थे उन सवालों के जवाबों को जाना, और जाना कि हम जैविक खेती से किस तरीके से लाभ ले सकते हैं और कैसे अपनी आय को बढ़ा सकते हैं और साथ साथ में अपनी खेती की लागत को हम कम कर सकते हैं।
2: साथियों के मन में बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो चल रहे थे और उनके काफी हद तक उनको जवाब भी मिल चुके होंगे, लेकिन श्रोताओं अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल चल रहे हैं तो हमेशा की तरह हमारा नंबर नोट करिए, क्योंकि हमारा नंबर जो है वो आपके सारे सवालों का जवाब देगा। जी हां श्रोताओं, उसके लिए आपको लिखना होगा हमारा नंबर जो है 9219207749। श्रोताओं आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या आप हमें पत्र के माध्यम से भी अपना सवाल पूछ सकते हैं, जिसके लिए हमारा पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तकेला के पास ओरछा। साथियों अब समय हो चला है कार्यक्रम में सवालों का। जी हाँ, हम आपसे पूछने वाले हैं एक सवाल और जिसका देना होगा आपको सही जवाब। अगर आप देते हैं सबसे पहले और सही जवाब तो आपको मिलेगा रेडियो बुंदेलखंड 90.4 की तरफ से एक खूबसूरत सा उपहार। तो साथियों आप तैयार हैं ना इनाम जीतने के लिए? चलिए जानते हैं हमारा आज का सवाल। आज का हमारा सवाल है, क्या हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए? सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, क्या हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए? ये हमारा आज का एक सवाल है। और श्रोताओं, पिछले कार्यक्रम का हमारा जो सवाल था, स्थायी खेती से क्या खेती की लागत कम की जा सकती है, ये हमारे कार्यक्रम का सवाल था, और जिसका सही जवाब देने वाले हैं डालचंद कुशवाहा जी, और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं क्योंकि सबसे पहले और सबसे सटीक शब्दों में सवालों का जवाब इन्होंने दिया है। तो इनको रेडियो बुंदेलखंड की तरफ से खूबसूरत सा उपहार जल्दी जल्द पहुंचा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें इतने ध्यान से सुनने के लिए और हमारे सवालों में जुड़ने के लिए। आज का सवाल यानी कि कार्यक्रम का सवाल एक बार फिर से सुन लीजिएगा। सवाल है, क्या हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए? तो आज के इस सवाल से उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो भी श्रोता साथी इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं और इस सवाल का सही जवाब देंगे, उनको हम अगले कार्यक्रम में उनके नाम के

0: साथ शामिल करेंगे। चलिए श्रोताओं, अब हमारा समय होता है आज के इस कार्यक्रम से जाने का। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी आपकी और हमारी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त वर्षा
1: और मनीष को दीजिए जाने की इजाजत।
0: आपकी और हमारी फिर होगी मुलाकात अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।
2: शुभ कल। बदलती जलवायु के लिए

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इबेरा अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। और दोस्तों, जैसे ही कार्यक्रम को समय भाव है सो हम लेके आ गए आपके लाने जो कार्यक्रम खेत खलियान। खेत खलियान कार्यक्रम में आज अपन बात करें टमाटर की खेती की। टमाटर की ये किस्में देंगी 1 एकड़ में 500 क्विंटल की पैदावार, जबरदस्त मुनाफा। दोस्तों, नवम्बर में तैयार करें नर्सरी और पाएं भरपूर उत्पादन। जाने कौन सी हैं ये किस्में और इसकी विशेषताएं और लाभ। सो साथियों, टमाटर की उन्नत किस्में जानबे से पहले अपन सुन लेते एक बढ़िया से गीत खो लेते हैं, गीत को आनंद। ये गीत के बाद फिर अपन टमाटर की उन्नत किस्मन की बात करें और जाने के जी किस्में हमें कितनी पैदावार दे सकती हैं। सो आओ सुन लेते हैं बढ़िया से गीत खो लेते हैं, गीत को आनंद। जी गीत को गा रहे हैं रामाधीन आर और रेखा राजी।

गई थी कहां, धनिया डारी किते कर धनिया। देखो जो गीत अपन सब जन ने सुनो है, गीत को आनंद लो। ये गीत को गा रहे थे रामाधीन आर और रेखा राज जी। दोस्तों आलू प्याज के बाद यदि कोई सब्जी का जिक्र किया जाता है तो वह है टमाटर। टमाटर का प्रयोग एकल व अन्य सब्जियों का जायका बढ़ाने में काफी मददगार होता है। इसके अलावा त्वचा की देखभाल में भी टमाटर का उपयोग किया जाता है। टमाटर में कैरोटीन नामक वर्णक होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन पोटेशियम के अलावा कई प्रकार के खनिज तत्व मौजूद होते हैं जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। भारत में इसकी खेती राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में प्रमुख रूप से की जाती है। आजकल तो 12 महीने बाजार में टमाटर की बिक्री होती है, इस लिहाजे से टमाटर की खेती लाभ का सौदा हो रही है। यदि टमाटर की खेती के लिए उन्नत व अधिक पैदावार देने वाली किस्मों का चयन किया जाए तो इससे काफी मुनाफा कमाया जा सकता है। आइए जानते हैं टमाटर की अधिक पैदावार देने वाली उन्नत किस्में और इसकी खेती से जुड़ी आवश्यक बातों के बारे में। साथियों टमाटर की देसी किस्में पूसा शीतल, पूसा 120, पूसा रूबी, पूसा गौरव, अरका विकास, अरका सौरभ और सोनाली प्रमुख हैं। टमाटर की हाइब्रिड किस्में पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 2, पूसा हाइब्रिड 4, रश्मि और अविनाश 2 प्रमुख हैं। भारत में टमाटर की खेती करने वाले किसानों के बीच टमाटर की अरका रक्षक किस्म काफी लोकप्रिय हो रही है। इसकी वजह से ये है कि एक तरफ तो इस किस्म से बम्पर पैदावार मिलती है, वहीं दूसरी ओर इसमें टमाटर में लगने वाले प्रमुख रोगों से लड़ने की क्षमता अन्य किस्मों से अधिक है। साथ ही अरका रक्षक का फल काफी आकर्षक और बाजार की मांग के अनुसार होता है, इसलिए किसानों का रुझान इस किस्म की ओर बढ़ रहा है। क्या है अरका रक्षक किस्म की विशेषता? दोस्तों यह किस्म भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु की ओर से वर्ष 2010 में इजाद की गई थी। संस्थान के प्रमुख वैज्ञानिक और सब्जी फसल डिवीजन के प्रमुख एटी सदाशिव का कहना है कि यह भारत की पहली ऐसी किस्म है जो त्रिगुण रोग प्रतिरोधक होती है। इसमें पत्ती मोड़क विषाणु जीवाणु झुलसा और अगेती अंगमारी जैसे रोगों से लड़ने की क्षमता है। वहीं इसके फल का आकार गोल बड़े गहरे लाल और ठोस होता है। वहीं फलों का वजन 90 से 100 ग्राम तक होता है जो बाजार की मांग के अनुकूल है। एक एकड़ में होती है 500 क्विंटल पैदावार। डॉक्टर सदाशिव के अनुसार टमाटर की इस किस्म में अन्य किस्मों की तुलना में कम लागत आती है जबकि मुनाफा जबरदस्त होता है। इसकी फसल 150 दिन में तैयार हो जाती है। पैदावार के मामले में यह टमाटर की अन्य किस्मों की तुलना में अधिक उत्पादन देने वाली है। इससे प्रति हेक्टेयर 190 टन का उत्पादन किया जा सकता है। वहीं प्रति एकड़ 45 से 50 टन का उत्पादन होता है। प्रति क्विंटल के हिसाब से उत्पादन देखें तो एक एकड़ में टमाटर की बुआई करने पर 500 क्विंटल तक पैदावार मिल सकती है। वहीं अन्य किस्मों से काफी कम पैदावार प्राप्त होती है। टमाटर की बुआई का सही समय, दोस्तों जनवरी में टमाटर के पौधे की रोपाई के लिए किसान नवंबर माह के अंत में टमाटर की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। पौधे की रोपाई जनवरी के दूसरे सप्ताह में करना चाहिए। यदि आप सितंबर में इसकी रोपाई करना चाहते हैं तो इसकी नर्सरी जुलाई के अंत में तैयार करें। पौधे की बुआई अगस्त के अंत या सितंबर के पहले सप्ताह में करें। मई में इसकी रोपाई के लिए मार्च और अप्रैल माह में नर्सरी तैयार करें। पौधे की बुआई अप्रैल और मई माह में करें। टमाटर की पौध कैसे तैयार करें? खेत में रोपने से पहले टमाटर के पौध नर्सरी में तैयार किए जाते हैं। इसके लिए नर्सरी को 90 से 100 सेंटीमीटर चौड़ी और 10 से 15 सेंटीमीटर उठी हुई बनाना चाहिए।
इससे नर्सरी में पानी नहीं ठहरता है, वहीं निराई गुड़ाई भी अच्छी तरह से हो जाती है। बीज को नर्सरी में 4 सेंटीमीटर की गहराई से बोना चाहिए। टमाटर के बीजों की बुआई करने के बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए। बीज की नर्सरी में बुआई से पहले 2 ग्राम केंटान से उपचारित करना चाहिए। वहीं खेत में 8 से 10 ग्राम कार्बोफ्रान 3 g प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से डालना चाहिए। टमाटर के पौधे जब 5 सप्ताह बाद 10 से 15 सेंटीमीटर के हो जाएं तब इन्हें खेत में बोना चाहिए। यदि आप 1 एकड़ में टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए टमाटर के 100 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी। टमाटर की फसल में ध्यान रखने वाली बातें। दोस्तों, टमाटर की फसल के लिए काली दोमट मिट्टी, रेतीली दोमट मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी में सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। वैसे टमाटर की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे उत्तम मानी जाती है। हल्की मिट्टी में भी टमाटर की खेती अच्छी होती है। इसकी अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी का पीएच मान 7 से 8.5 होना चाहिए, क्योंकि इसमें मध्यम अम्लीय और लवणीय मिट्टी को सहन करने की क्षमता होती है। विभिन्न कीटों और मृदा जनित रोगों से बचने के लिए बीज को 3 ग्राम थायरम या 3 ग्राम कार्बिजेंडा से उपचारित करें। यदि आपने टमाटर की फसल गर्मियों के दिनों में लगाई है तो 6 से 7 दिनों के अंतर पर सिंचाई करना चाहिए। यदि आप सर्दियों में टमाटर की फसल ले रहे हैं तो 10 से 15 दिन के अंतर में सिंचाई करना पर्याप्त है। टमाटर की अच्छी पैदावार के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करना जरूरी है। टमाटर की खेती का तरीका। खेत को 3 से 4 बार जोतकर अच्छी तरह से तैयार कर लें। पहली जुताई जुलाई माह में मिट्टी पलटने वाले हल अथवा देसी हल से करें। खेत की जुताई के बाद समतल करें। 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से छड़ी गोबर की खाद को समान रूप से खेत में बिखेर कर पुनः अच्छी तरह जुताई करें और घास पात को पूर्ण रूप से हटा दें। इसके बाद टमाटर की पौध को 60 से 45 सेंटीमीटर की दूरी लेते हुए रोपाई करें। खाद एवं उर्वरक। उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर किया जाना चाहिए। किसी कारण से अगर मिट्टी का जांच संभव ना हो तो उस स्थिति में प्रति हेक्टेयर नत्रजन 100 किलोग्राम, स्फुर 80 किलोग्राम, पोटास 60 किलोग्राम की दर से डालना चाहिए। 1/3 नत्रजन, स्फुर और पोटास की पूरी मात्रा का मिश्रण बनाकर प्रतिरोपण से पूर्व मिट्टी में

कर अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। शेष नत्रजन को बराबर भागों में बांटकर प्रतिरोपण के 25 से 30 और 45 से 50 दिन बाद ऊपरी बेसन के रूप में डालकर मिट्टी में मिला देनी चाहिए। जब फूल और फल आने शुरू हो जाएं, उस स्थिति में 0 से 4, 0 से 5% यूरिया के घोल का छिड़काव करना चाहिए, लेकिन सांद्रता पर काफी ध्यान देना चाहिए। अधिक सांद्र होने पर छिड़काव से फलों की पूरी बर्बादी होने की संभावना रहती है। वहीं हल्की संरचना वाली मृदाओं में फल फटने की संभावनाएं रहती हैं। प्रतिरोपण के समय 20 से 25 किलोग्राम बोरेक्स प्रति हेक्टेयर की दर से डालकर मिट्टी में भली भांति मिला दें। फलों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 0 से 3% बोरेक्स का घोल फल आने पर 3 से 4 छिड़काव करना चाहिए। पाला व लू से टमाटर की फसल की सुरक्षा। टमाटर की पौध के प्रतिरोपण के तुरंत बाद सिंचाई आवश्यक करनी चाहिए। इसके बाद 15 से 20 दिनों के अंतराल में सिंचाई की जा सकती है। टमाटर की फसल को जाड़े में पाला व गर्मियों में लू से बचाना बेहद जरूरी होता है। टमाटर की फसल को जाड़े में पाला तथा गर्मी में लू से बचाना केवल 10 से 12 दिनों के अंतराल में सिंचाई करनी चाहिए ताकि खेत में नमी बनी रहे। इससे जाड़े में पाला तथा गर्मी में लू का प्रकोप कम होगा, जिससे टमाटर की फसल को सुरक्षा मिलेगी और उत्पादन पर भी विपरीत असर नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों बात करें खरपतवार नियंत्रण की। कई खेतों में खरपतवार की समस्या अधिक रहती है। यदि आपके खेत में भी ऐसी समस्या है तो इसके नियंत्रण के लिए लासो 2 किलोग्राम हेक्टेयर की दर से प्रतिरोपण से पूर्व डालना चाहिए। वहीं रोपण के 4 से 5 दिन बाद स्टाम्प 1.0 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे उपज पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सकता है। सो देखो दोस्तों, जा अपन ने आज बात करी है टमाटर की उन्नत खेती की। सो दोस्तों अब एक क्रम में अपन और कह रहे हैं कि माता दिन भैया बहुत देर से टमाटर के बारे में बात कर रहे हैं, मनोरंजन की तरफ कोनो ध्यान नहीं दे रहे। सो आओ दोस्तों मनोरंजन के लाने अपन सुनत ही बढ़िया से गीत खोल लेते हैं, गीत को आनंद। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। आओ दोस्तों सुन लेते हैं गीत को। जी गीत को गा रहे हैं रामकिशोर प्रजापति जी।

लर परी तुमैया तुमा से पंचन में देत उरानो। देखो कितनो बढ़िया जो गीत अपन सब जन ने सुनो है, गीत को आनंद लो है। गीत को गा रहे थे रामकिशोर प्रजापति जी। अब दोस्तों रामकिशोर प्रजापति भैया जी के गीत के बाद हम आपको बता देंगे कि आज के कार्यक्रम खेत खलियान को इतना ही समापन होबे को समय हो गए है। सो अपने दोस्त माता दिन भैया को दो ये कार्यक्रम से जावे की अनुमति। अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात है कार्यक्रम में, यही बेरा पे। जब तक के लाने नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप इवीरा अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जानने के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। और साथियों, विधा बुंदेली कार्यक्रम में आज सुने अपन विधा देवी गीतन को, और देवी गीतन को आनंद ले हैं। सो दोस्तों, आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन भैया के संग में। सो आओ दोस्तों, देर न करत हुए कार्यक्रम को तो आगे बढ़ाऊ थे, और कार्यक्रम में सुनते हैं इन प्यार प्यारे से देवी गीतन को। सो आप सुनते हैं सबसे पहले जो गीत जी गा रहे हैं दिनेश सोनी जी।
1: दर्शन के लाने परसन से तरसन लगी नजरिया,

दर्शन के लाने बरसन से, दर्शन के लाने बरसन से तरसन लगी नजरिया। मैया खोल दो, मैया खोल दो जे द्वार की बरी।

खंड शक्ति बुंदेलखंड में शक्ति प्रचंड तुम्हारी, अखंड शक्ति बुंदेलखंड में शक्ति प्रचंड तुम्हारी। खोलो पलक झलक दई श्री जय, मिट गई ललक हमारी। खोलो पलक झलक दई श्री जय, मिट गई ललक हमारी। पान बतासा ध्वजा नारियल, पान बतासा ध्वजा नारियल, से भर गई चौतरिया। मैया खोल दो, मैया खोल दो जे द्वारे की किबरिया। मैया खोल दो द्वारे की किबरिया। दर्शन के लाने बरसन से, दर्शन के लाने बरसन से, तरसन लगी नजरिया। मैया खोल दो, मैया खोल दो जे द्वारे की किबरिया।

दोस्तों, जो कितना प्यारो गीत अपन सब जन ने सुनो है, ये गीत को आनंद लव है। ये गीत को गा रहे थे दिनेश सोनी जी। आप दोस्तों अब कार्यक्रम में आगे सुनते हैं अगले साथियों के गायब है गीत को। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

बिल्कुल दोस्तों, माँ के चरणों में अर्जी कोको लगाएं। देखो कितना अच्छा जो गीत अपन सब जन ने सुनो, गीत को आनंद लो है। ये गीत को गा रही थी राजा बद्रेली जी। अब दोस्तों आओ सुनते हैं अगले साथी इनके गाय भाई गीत को।

दोस्तों, कायर उठो केसर उठो फूलन को लंगरवा कायर उठो। देखो कितना बढ़िया जो गीत अपन सब जन ने सुनो, गीत को आनंद लो। ये गीत को गा रहे थे भैया कृष्णकांत कुशवाहा जी। अब दोस्तों आओ एक क्रम में फिर से सुनाते हैं अगले साथी के गाय भाई गीत को।

हो जा दयाल कृपाल महामाई आपकी बीर। देखो दोस्तों कितना बढ़िया जो गीत अपन सब जन ने सुनो, ये देवी गीत को आनंद लो है। ये गीत को गा रहे थे भैया गोविंदास कुशवाहा जी। सो आओ दोस्तों गोविंदास भैया जी के गीत के बाद फिर से सुनते हैं अगले साथी इनकी गायब है गीत को।

दोस्तों, मैया भक्त खड़े पुकारे दूर में हो माँ। देखो दोस्तों, कितनों प्यारो जो भजन अपन सब जन ने सुनो, भजन को आनंद लो है। और दोस्तों ई भजन को जो गा रहे थे वे गा रहे थे किशोरी लाल कुशवाहा जी। अब दोस्तों ये गीत के बाद फिर से सुनते हैं अगले साथी इनके गायब है गीत को।

देखो दोस्तों, जो कितना बढ़िया गीत अपन सब जनन ने सुनो है, गीत को आनंद लाओ है। ये गीत को गा रहे थे भैया मनीराम मंचला जी। और अब मनीराम भैया मंचला जी के ये गीत के बाद हम आप सब जन को बता देवे कि आज के ही कार्यक्रम से अपने दोस्त माता दीन भैया को जाबे को समय होगा है। सो दोस्तों, हमें दो ही कार्यक्रम से जाबे की अनुमति, अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात है कार्यक्रम में ए बीरा पे। जब तक के लाने नमस्कार।

0: दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: उतार दियो गगरी लाला दे होने गो तुम्हारो के हम आई सुनो
1: गगरी तोरी भौजी चबई उतर है गगरी तोरी भौजी चबई

के वही देखो जी के लड़का बिटिया तुम्हें राम ने दी है हम सबको आनंद भैये ऐसे के रहे के गगरी उतार दिखाए।

इसे हम देखो आपसे कह रहे हैं।

0: दिन हम आओके बो है तुम कह रहे के तू बेने है हमें नेग में जो नहीं जाने मालूम का जाने
1: पहचान
0: क्या बो है
2: प्राणन से प्यारी हो जाई ध्यान से सुनियो बात हमारी ध्यान से सुनियो बात हमारी कादर हो गगरी।

0: जाने जब बिटिया हमेशा खुश रहे और दोनों को लड़की शान बढ़ावे जो ही हमें तुम से नेगे बिचाने और कछु ले जाने और
1: अरे खुशी रहे राज दुलारो कुल को है उजियारो खुशी रहे तो राज

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप सुन रहे थे आज की सभा के प्यारे प्यारे से कार्यक्रम। तो दोस्तों, आप सब जन खोजे आज के कार्यक्रम कैसे लगे। अब दोस्तों, आज की सभा इतनी संपन्न होते है, सो चलत चलत आप उन्हें लिख लो हमारे फोन नंबर को और पते को, जिसे आप उन्हें फोन नंबर पे और पते पे हमें कार्यक्रम के राय सुझाव भेज सकें। दोस्तों, हमारा फोन नंबर है 92-19-20-77-49। सो ई नंबर पे आप फोन लगा के और हमें बता सकत के हमें कार्यक्रम कैसे लग रहे। अब दोस्तों लिख लो हमारे पते को, हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। सो आप और ई पते पे चिट्ठी पत्री लिख के भी भेज सकत के हमें कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं। अब आज की सभा को इतनी समापन हो गए को समय हो गए है। नमस्कार।
1: ये आवाज है बुंदेलखंड की।

0: शुभकर्म बदलती जलवायु के लिए तैयार हम।
1: मन मैया तुम्हारे जैसो और को नैया हाथ धो को न दियो मुनैया तुम।

0: बिल्कुल दोस्तों, देखो जो कितनों प्यारो गीत अपन सब जनन ने सुनो है, गीत को आनंद लो। ये गीत को गा रहे थे दशरथ प्रजापति जी और रजनी नायक जी। अब दोस्तों आओ ये गीत के संगे संगे है अपन कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और कार्यक्रम में मिलते हैं भैया कालीचरण कुशवाहा जी से, जो झांसी पुलिया नंबर 9 के रविवाय है। सो आओ दोस्तों अब देर ना करत भाई मिलते हैं भैया जी से।
1: अच्छा पहला तो आप अपना नाम पता बताओ।
2: हमारा नाम कालीचरण कुशवाहा है, पुलिया नंबर 9 झांसी सुभाष स्कूल के पास।
1: बिल्कुल पुलिया नंबर 9 झांसी के रविवाय है अपन। चलो बहुत अच्छी बात है। तो अपनो जो पुलिया नंबर 9 है वह वार्ड नंबर के में पड़त?
2: वार्ड नंबर 17।
1: वार्ड नंबर 17 में? चलो बहुत अच्छी बात है, 17 में है आप। तो अब बात करें अपन वार्ड नंबर 17 की। तो अपने ते जो वार्ड नंबर 17 में पानी की बात करें अगर, तो पीवे के पानी की क्या व्यवस्था है, कहाँ से आउट पानी?
2: पानी तो बोरिंग का भी है।
1: अच्छा बोरिंग को है?
2: अच्छा नल भी पर्याप्त आते हैं, पहले पे दिक्कत होती थी।
1: अच्छा जिनके पास बोरिंग नहीं है उनके पास कहाँ
2: नल की सुविधा?
1: अच्छा नल की सुविधा है। चलो बहुत अच्छी बात है, देखो कितनी बढ़िया सुविधा है कि नल आउट आपके लिए। तो जो नल आउट तो ये सुबह शाम ही आउट या फिर
2: सुबह शाम आते हैं? और फ्री वाले भी मतलब दिन भर भी आते हैं।
1: अच्छा का दो प्रकार के नल हैं?
2: हाँ दो प्रकार के।
1: इनमें कैसे फ्री वाले जो आपका, चूंकि ऐसी बात
2: वो जैसे पब्लिक उसके जैसे मोहल्लों में नहीं लगा देते हैं सरकारी नल।
1: अच्छा सरकारी नल जैसे के, जैसे अब गांव में देखो जाते के पूरा मोहल्ला में सरकारी नल लगे रहते हैं, तो इस हिसाब से का आपके जो शहर की बात करें तो सरकारी नल ऐसे हैं का?
2: पब्लिक नल भी है और हैंडपम्प भी सरकारी है।
1: अच्छा तो ज्यादातर लोग काय को यूज करते हैं, हैंडपम्प को या
2: नल को? नल का भी करने लगे हैं, जिन जिन को कहीं पानी नहीं है तो हैंडपम्प भी सूख जाते हैं।
1: हाँ
2: तो नल द्वारा उनको पूर्ति हो जाती है।
1: अच्छा नले की सप्लाई से पानी ले? चलो बहुत अच्छी बात है। तो देखो पानी की व्यवस्था कोनो ऐसी तो है नहीं के गड़बड़ हो गए?
2: नहीं पानी की बढ़िया व्यवस्था है,
1: पानी पर्याप्त है?
2: पर्याप्त है।
1: चलो बहुत अच्छी बात है। तो देखो सबसे मेन बात जो रहते है अपने खाबे पीबे में पानी की बात रहती, तो पानी की व्यवस्था आपके मोहल्ला में बिल्कुल बढ़िया सी
2: है? मोहल्ले में है, झांसी क्षेत्र में तो पानी की समस्या तो है ही नहीं।
1: चलो
2: गर्मियों में हो जाती है,
1: गर्मियों में हो जाती है कहीं कहीं,
2: लेकिन वैसी नहीं होती है कि बिल्कुल पानी के लिए बैठ जाए।
1: तो देखो जा बात भाई अपनी पानी की, अब एक क्रम में बात करें अपन बिजली की सुविधा की। तो बिजली के लाने का है आपके नगर पंचायत की तरफ से है लाइट?
2: तो रोडों पे लाइटें लग गई हैं, हर खम्बे पे लाइट है।
1: अच्छा हर खम्बे पे लाइट लग गई
2: है? अच्छी व्यवस्था हुई है।
1: हाँ जो बहुत अच्छा है कि आपके रोड पे लाइट हो गई,
2: बहुत अच्छा काम।
1: अच्छा एक क्रम में बात करें अपने मकान की लाइट की, तो इमे का लाइट दिन रात रहते या फिर
2: 24 घंटे रहती है?
1: इको समय रत के फलाने
2: नहीं,
1: समय पे आए फलाने
2: समय पे चले, कोई समय नहीं, कटौती पहले होती थी,
1: अब नहीं हो रही?
2: अब नहीं होती है, 24 घंटे आती है।
1: चलो बहुत अच्छी, तो बिजली की भी सुविधा आपके तो पर्याप्त
2: है,
1: अच्छी है। चलो बहुत अच्छी बात। अब एक क्रम में बात करें अपन साफ सफाई की,
2: साफ सफाई भी बहुत अच्छी है।
1: साफ सफाई के लाने बात अगर करें तो साफ सफाई में आप कौन प्रकार की साफ सफाई की बात कर रहे हैं? क्या
2: रोड की सफाई है?
1: रोड की सफाई? हाँ, चल बहुत अच्छी
2: तो वार्ड, हर वार्ड में हर मोहल्ले में एक एक आदमी लगा हुआ है, सफाई कर्मचारी जो होते हैं।
1: हाँ
2: हर मोहल्ले में एक एक जो है लगा हुआ है,
1: हर मोहल्ले में सफाई कर्मी आउट? तो जो सफाई कर्मी सप्ताह में आउट के डेली आउट डेली आते हैं? चलो बहुत अच्छी बात है। तो देखो सफाई की लाने का है कि जब जिते अपन सफाई से रहे तो उते बीमारी ना है।
2: बिल्कुल नहीं
1: है? तो जब बीमारी ना है तो अपन को बीमारी
2: साफ सफाई रहेगी तो बीमारी आने का सवाल
1: ही नहीं। चलो बहुत अच्छी बात है। तो देखो आपके जो

0: दिल में जा बात खटक रही, तो वह बात आप जो बताओ कि कौन सी आपको लग रही कि हमारे मोहल्ला में ये चीज की कमी हमें लग रही।
1: अभी तो वैसे सब हर चीज की पूर्ति हो चुकी है, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब विभागीय स्थानीय जो मतलब कर्मचारी है या लाइट विभाग है या सफाई कर्मचारी है वो बड़ी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं।
0: अगर बात करें अपन शिक्षा की तो शिक्षा को क्या स्तर है?
1: शिक्षा भी बहुत अच्छी मतलब जो है स्तर से हो रही है।
0: पढ़ाई लिखाई की लाइन वाले बच्चे कहाँ जाते?
1: स्कूल है, सुभाष स्कूल है और मतलब सरकारी स्कूल है उसमें भी बच्चे पढ़ते हैं। प्राइवेट तो फिर हर माँ बाप जो है चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से अच्छा पढ़े।
0: बिल्कुल सही बात है। अच्छा अगर अपन बात सरकारी की करें तो आपके जो वार्ड नंबर है तो आपकी वार्ड में है या फिर आपकी वार्ड से दूर है?
1: नहीं वार्ड मतलब 9 नंबरी में है, पुलिया नंबर 9 में है, सरकारी स्कूल है और सुभाष स्कूल में भी जो है अच्छा सरकारी वो भी है।
0: चलो तो शिक्षा भी अच्छी
1: अच्छी
0: व्यवस्था है,
1: शिक्षा की सारी व्यवस्था बढ़िया है।
0: चलो बहुत अच्छी बात,
1: बीजेपी जब से आई है हाँ। जब से सारी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से अच्छी है।
0: अच्छी हुई। तो जो आपने जब बात कही है कि देखो हमें कोनो परेशानी नहीं है और सब बढ़िया चल रहा आपके तरह, तो आपने इतनी अच्छी बातचीत करी और ये बातचीत में भाग लो, आपने इतना कीमती समय दो, ये खिलाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: हाँ देखो दोस्तों, जी तो हते कालीचरण भैया जी जिनने अपन को बताई है पुलिया 9 नंबर की पूरी बात के, हमारे ते का बिजली की व्यवस्था है, का पानी की व्यवस्था है, का रोड की व्यवस्था है, का साफ सफाई की व्यवस्था है, सारी बातें इनने अपन को बताई हैं। आप दोस्तों एक क्रम में अपन कथुइयों के देखो माता दिन भैया बिल्कुल बातन में लगे हैं और मनोरंजन की ओर कोनो ध्यान नहीं कर रहे। जी हाँ दोस्तों, सो मनोरंजन की लाने आप सुना थे एक बढ़िया से गीत को और गीत को आनंद लेते हैं। So, आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।
3: उजरत दिया सिरा गौछन में, के उजरत दिया सिरा

0: शुभ कल बदलती जलवायु के लिए तैयार हूं।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम शुभ कल में। और जैसा कि श्रोता साथियों आप जानते हैं कि शुभ कल कार्यक्रम में हम विभिन्न प्रकार के विषयों पर हम चर्चा करते रहते हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे स्टूडियो में आए हैं राजेश जी, जो कि यहाँ पर आके उन्होंने बहुत सारे गांव में विजिट किया है। और खास तौर पर जब हमारे पानी बचत की बात आती है या क्लाइमेट चेंज की बात आती है तो बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में चलती है। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है कि हमारे आप स्टूडियो में पहली बार आपने यहाँ पर आए हैं, तो हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर।

0: धन्यवाद सर। जानना चाहेंगे आपसे कि जो क्लाइमेट यानी जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे खास तौर पर खेती पर बहुत ज़्यादा प्रभाव और खास तौर पर किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्या बातें हैं जो हमारे समुदाय के लिए बहुत ज़रूरी है, किस तरीके से हम जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको हम किस हद तक हम रोकने की कोशिश कर सकते हैं सर?
1: सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया आपके इस रेडियो के माध्यम से। जहाँ तक आपने जो प्रश्न किया, बहुत आज की जो परिस्थितियाँ हैं और ख़ासतौर पे बुंदेलखंड में जो परिस्थितियाँ हैं उसको ध्यान में रख करके देखें तो क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा असर हम किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। और उसकी जो मुख्य वजह है कि हम यदि कुल बारिश में देखें, यदि वर्षा का आंकड़ा देखें, तो कभी कभी हमको लगता है कि आंकड़ा तो कुछ और कह रहा है कि बारिश में तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। तो जहाँ तक कुछ सालों की जब रेनफॉल की आंकड़ों को देखें तो वो अंतर नज़र नहीं आता, बट अंतर क्या है कि जब पानी की ज़रूरत है तब पानी नहीं गिर रहा है
0: जी।
1: और एक साथ पानी बहुत तेज़ी से गिर रहा है
0: जी।
1: तो जो हमारी फसलें हैं उसका उसको समय समय पे पानी की ज़रूरत महसूस होती है और असमय पानी का गिरना ये क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा सब सामना कर रहे हैं। और जो समय पे पानी नहीं गिरने की वजह से फसलों के जो प्रोडक्शन है जितना उत्पादन होना चाहिए उस उत्पादन में भी कमी हो रही है और कभी कभी तो पूरी पूरी जो हमारी फसल है वो पूरी फसल, और जैसे कि मैं अभी इस साल आया हूँ कि पानी की वजह से पहली फसल जो खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल लगभग 70-80% फसल इस साल हुई नहीं,
0: हुई नहीं।
1: उसका सबसे बड़ा जो रीजन है कि इस साल अतिवृष्टि हो गई। तो पानी को जितना जिस जगह पे होना चाहिए थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, पर बहुत ज्यादा यदि कम या बहुत ज्यादा वर्षा जो है वो इस फसल के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। और यही वजह है कि हमारे किसान भाई इस साल, अभी मैं 2 दिनों से आपके गांव में ही था मुन्ना खास तौर पे, तो पुरुष जो हैं वो सारे बाहर चले गए क्योंकि गांव में अभी कोई किसान होकर के भी किसानी का काम नहीं कर पा रहे क्योंकि कोई फसल नहीं है
0: जी।
1: तो इस जो है ये बहुत बड़ा हमारे जो कृषि प्रधान देश के नाते यदि किसानी का जब समय हमारा खरीफ की फसल को यदि हमारे इतना बड़ा क्षेत्र नहीं ले पाएगा तो सोचिए कि आगे जाकर के जो हमारे अन्न की जितनी जरूरत है उसमें कितनी बड़ी। तो मेरा ये मानना है ये 2 दिनों के इसमें कि छोटे छोटे उपाय हैं जिनको यदि हम करें तो शायद ये जो गंभीर समस्याएं हमारे किसान भाई जो सामना कर रहे हैं तो उसमें मुख्य रूप से हमें ऐसी फसलें लगाने की जरूरत है जो कि बहुत कम वर्षा में भी सहन कर सके, और थोड़ी अतिवृष्टि होती है तब भी वो फसलें हमें, जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे ज्वार
0: जी।
1: तो ज्वार एक ऐसी फसल है जो बहुत कम पानी होता है तब भी वो होती है
0: जी।
1: और सामान्य बारिश में तो वो अच्छी होती है, बट अतिवृष्टि के समय भी ज्वार की फसल, तो ऐसी बहुत सारी फसलें हैं जिसको कि हमें कुछ मात्रा में उसको भी हमें, तो 2-3 तरह की हम फसलें लें जिसमें हमारा जो उत्पादन है वो कभी भी ऐसी स्थिति ना हो कि हमारा उत्पादन ना आए। तो फसलों का चयन हम ऐसा करें जो इस तरह की। तो उसके अलावा कुछ छोटे छोटे जो है हमें वाटरशेड के जो काम है, जो जल संरक्षण के कार्य है, उसको करने की भी हमको आवश्यकता है। और खास तौर पे जल संरक्षण में हमें 2 तरह के उपाय, जैसे अभी आजकल अतिवृष्टि भी होने लगी है तो हमें वो भी उपाय करने हैं कि पानी को जब ज्यादा गिर जाए तो कैसे वो सुरक्षित हमारे खेत से बाहर निकल जाए, और जब पानी हमें कम चाहिए या जब मीडियम हमारी वर्षा हो रही है उस समय पानी को हम कैसे संरक्षण करके रखें ताकि थोड़े समय का यदि उसमें अंतराल में पानी गिरता है तब भी हमारी फसल में जो मॉइस्चर है जमीन की, उसी से उत्पादन में कोई फर्क ना पड़े। इसके अलावा भी और भी जो हमारे गांव की जितनी संरचना है उसको हम समय समय पे उसकी मिट्टी निकालते रहे, ताकि उसका जो हमारा पानी का जो स्टोरेज एरिया है, जो संग्रह क्षमता है, उसमें किसी तरह की कमी ना हो। साथ ही साथ हमारी जो सरकार की योजनाएं हैं, हमारे क्षेत्र में जो भी अन्य संस्थाएं काम कर रही हैं, उनके साथ मिलकर के अच्छे से योजना बनाएं और उन योजनाओं में अधिकतर हम पानी को संग्रहित करने के काम को जोड़ें। और साथ ही साथ हम ये पूरा ध्यान रखें कि खेती में हम पूरा ये ध्यान रखें कि हमारे गांव में कितना पानी गिरता है, तो उस पानी के हिसाब से क्या हम फसल लगा रहे हैं। यदि पानी के हिसाब से नहीं है तो हमें क्या उपाय करने की जरूरत है, इस पे सोचने की जरूरत है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।
0: बिल्कुल राजेश जी, आपने बहुत ही हमारे श्रोताओं को, हमारे समुदाय के लोगों को बड़ी अच्छे तरीके से विचार करने के लिए विमर्श कर दिया है कि किस तरीके से हमें अपनी खेती में बदलाव करना चाहेंगे। चूंकि आखिरी सवाल हमारे मन में चल रहा था, हमारी जिज्ञासा थी कि आपसे पूछे, चूंकि आप देश के कई जगह आपने भ्रमण किया है, बहुत सारी खेती में बदलाव देखे भी हैं, चूंकि बुंदेलखंड क्षेत्र में और हमारी सरकार भी कह रही है कि मोटे अनाज फिर से करना चाहिए, खेती में लाना चाहिए, आपका क्या मानना है कि इस क्षेत्र में किस तरीके से मोटे अनाज को लेकर लोगों को जागरूक करना चाहिए, किस तरीके से वो मोटे अनाज पर जाएं?
1: बहुत बड़ा सवाल आपने रखा है। और अभी देखें कि पूरा स्वास्थ्य के साथ सीधा सीधा हमारा खान पान का संबंध है। और हमारे देश में ये जो मोटे अनाज की आपने सवाल किया
0: जी,
1: तो यही अनाज हम खा रहे थे, बट हमने ये बदलाव कब से शुरू किया, जब से हरित क्रांति इस देश में आए।
0: बिल्कुल।
1: तो 1970 में जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई, तो पंजाब हरियाणा ये जो हमारा गंगा नदी का एरिया है
0: जी,
1: इस क्षेत्र में दो फसल आई, गेहूं और चावल।
0: चावल
1: तो ये जो दोनों फसल है ये जो है हमारे शरीर के हिसाब से ठीक नहीं है, तो इसकी वजह से ये किसके लिए अच्छा था
0: जी,
1: जो मेहनत करते
0: जी।
1: बट आज हमारे जो शहर में खास तौर पे जितने लोग हैं, या गांव में भी ऐसे लोग हैं जो शारीरिक श्रम नहीं करते, कोई स्कूल का टीचर है या कोई दुकान पे बैठता है, तो जिसका शारीरिक श्रम नहीं है
0: जी,
1: उनके लिए गेहूं और चावल जो है वो कहीं से भी शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो इसको पचा पाने के लिए आपको बहुत ज्यादा श्रम करने की जरूरत है। और मोटा अनाज जिसकी आपने बात कही कि मोटा अनाज ऐसा अनाज है जिसका बहुत जल्दी हमारे शरीर में पचता है, और उससे जो आजकल की जो जो कॉमन बीमारियां हैं, जैसे हम कहें कि हाई बीपी है या शुगर है, ये दो आम बीमारियां पूरे भारत में फैली हुई है। तो ये दोनों बीमारियों से यदि हम छुटकारा चाहते हैं तो सबसे बड़ा है कि मोटे अनाज, ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखेगा। सबसे बड़ी चीज खासतौर पे बुंदेलखंड की बात कहूँ कि मोटा अनाज शरीर के लिए तो अच्छा है, बट ये सबसे कम पानी की जरूरत इसमें महसूस होती है। तो यदि हमें बुंदेलखंड में, और हम माने कि बहुत अच्छे से हमारे दूसरी जनरेशन भी खेती का काम करें, खेती ना छोड़ें, तो हमें मोटे अनाज का अधिक से अधिक उत्पादन, चाहे वो रबी का सीजन, खरीफ का सीजन हो या रबी का, और यदि हम तीसरी फसल भी लेना चाहते हैं तो हम मोटे अनाज की ओर जाएं, ताकि हमारे देश की अन्य सुरक्षा भी हो और हमें जितना पानी हमारे पास है उसी पानी में, और ये नहीं, ये केवल बुंदेलखंड नहीं, जहाँ भी पानी की समस्या है वहाँ पे मोटे अनाज पे ही हमें जाना चाहिए।
0: सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बड़ी महत्वपूर्ण बातचीत आपने बता दी है। चूंकि आपके पास समय बहुत ही कम है, तो हम आग्रह करेंगे कि जब भी आपसे हमारी मुलाकात हो, चाहे वो फोन के माध्यम से या फिर बुंदेलखंड क्षेत्र में आपका भ्रमण हो, तो आप जरूर आइएगा इस विषय को लेकर। चूंकि हम ऐसे विशेषज्ञों को चयन कर रहे थे कि मोटे अनाज पर कम से कम बोल सके, बहुत सारे लोगों से हमने सर टॉक की है, तो बहुत ही कम लोगों को इस तरीके के बारे में जानकारी है, क्योंकि

0: अनाज को लेकर लोग पूछते भी हैं। जब कम्युनिटी के पास या समुदाय के पास हम लोग जाते हैं, मोटे अनाज पर उनसे आग्रह करते हैं कि आने वाले समय में हमें मोटे अनाज पर जाना चाहिए, लेकिन समस्या यही रहती है कि ना तो उसका बाजार है और ना ही करने का जो तरीका है वो लोग भूलते चले जाए चूंकि नई जनरेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम शुभ कल में। और अभी आपने हमारे डॉक्टर राजेश वर्मा जी को सुना, बड़े अच्छे उन्होंने अनुभव अपने बयां किए हैं। साथ साथ में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको लेकर बड़े विस्तार से हमारे श्रोता साथियों को बताया है। साथ में मोटे अनाज को लेकर भी उन्होंने प्रकाश डाला है कि किस तरीके से हम अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में मोटे अनाज पर ध्यान दे सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, बड़े विस्तार से इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया है। हमें आशा है कि हमारे श्रोता साथियों को ये जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण लगी होगी, और ख़ास तौर पर ऐसी ऐसी जानकारी जो हमारे श्रोता साथियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण रहती है। हम कोशिश करते हैं उन जानकारियों को कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाएँ। हम धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर राजेश वर्मा जी का, जिन्होंने समय निकालकर इस बुंदेलखंड क्षेत्र में दो दिन विजिट किए और कई गाँव का भ्रमण भी किया है, क्योंकि ये भारत के कई जगहों पर जाकर इन चीज़ों पर देखते हैं, बातचीत करते हैं। और बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे स्टूडियो में रेडियो बुंदेलखंड में आए और उन्होंने अपनी बातचीत को रखा है। धन्यवाद देना चाहते हैं साथियों। अब हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम शुभ कल कार्यक्रम से जाने का। कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमारे इस नंबर पर, नंबर है हमारा 9219207749, या फिर चिट्ठी के माध्यम से अगर आप हमें अपने सुझाव भेजना चाहते हैं तो हमारा पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम ओरछा देगला के पास ओरछा। और हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम से जाने का, और उन्होंने बहुत मधुर आवाज में अपने एक गीत को प्रस्तुत किया है, उस गीत को हम सुनते हैं उनकी ही आवाज में। नमस्कार।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथियों कैसे हैं? मैं आशा है कि हमारे सभी श्रोता साथी अच्छे होंगे। अब तो स्कूल कॉलेज सब कुछ खुल गए हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने ट्वेल्थ में बहुत अच्छे मार्क्स उन्होंने पाए हैं उन सभी स्टूडेंटों को, विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं जिन्होंने अपना, अपने देश का, अपने गांव का नाम रोशन किया है। साथियों हम होंगे कामयाब कार्यक्रम के माध्यम से। हम तरह तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं, उनके व्यक्तित्व विकास पर चर्चा करते हैं, कहां पर उनको कैरियर बनाना चाहिए, कैसे कैरियर बना सकते हैं उस विषय को लेकर चर्चा करते हैं, साथ में उनकी आजीविका को लेकर चर्चा करते हैं। सफल जो हमारे साथी रहे हैं उनको भी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बताते हैं, सुनाते हैं आप लोगों को, और उनसे प्रेरणा लेकर बहुत सारे श्रोता साथी ने अपने जीवन में बदलाव किया है। आज के हमारे इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में, चूंकि स्कूल कॉलेजेस ओपन हो गए हैं और हमारे विद्यार्थी अब असमंजस में हैं, क्या करें, कैसे करें, कौन मार्गदर्शन देगा, बड़ी मतलब ऐसी विचित्र समस्या रहती है इस समय डिसीजन लेने के लिए। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए आज हम पत्रकारिता के क्षेत्र में, चूंकि आज मास कम्युनिकेशन को देखा जाए, पत्रकारिता को देखा जाए तो काफी ब्रॉड होती चली जा रही है, काफी इसका विस्तार हुआ है। तो आइए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे कैसे हमारे युवा साथी इसमें कैरियर बना सकते हैं, कहाँ अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कैसे अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज डॉक्टर संजीव जी हमारे आज स्टूडियो में पधारे हैं, तो उनसे आज ज्ञान लेंगे, उनसे आज ऑप्शन ढूंढेंगे, उनसे आज जानकारी लेंगे कैसे हमारे युवा साथी अपना कैरियर, अपना भविष्य इस क्षेत्र में बना सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है, क्या संभावनाएं होती है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुए डॉक्टर संदीप जी के पास आपको ले चलते हैं, उनसे हम वार्तालाप करते हैं इस विषय को लेकर। सर जानना चाहेंगे,
1: धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं सभी रेडियो बुंदेलखंड के श्रोताओं को अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, और रेडियो बुंदेलखंड का आभार अभिव्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने स्टूडियो में मुझे आमंत्रित कर इस वार्ता के लिए सुअवसर दिया।
0: सर देखा जाता है कि अगर बुंदेलखंड की ही बात करें और बुंदेलखंड में खास तौर पर युवाओं का कैरियर, क्योंकि ट्वेल्थ के रिजल्ट घोषित हो गए हैं और नया सेशन भी चालू हो गया है, जुलाई से स्टार्ट हो जाता है, तो चूंकि हमारे बहुत सारे युवा साथी
1: जी
0: ये जहन में उनके रहता है कि अब आगे क्या करें, किसमें कैरियर बनाएं, कैसे बनाएं, क्योंकि उनका जो मन रहता है बड़ा चंचल रहता है। किसी दोस्त ने उनसे कह दिया कि आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आप अपना कैरियर बना सकते हैं, साथ में अगर किसी ने कह दिया कि आप पढ़ाई करिए आईएएस आईपीएस की तैयारी करिए, आपको क्या लगता है किस तरीके का लोगों को और खास तौर पर युवाओं को किस तरीके का चयन करना चाहिए? सर
1: बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया और बहुत सटीक समय पे आपका प्रश्न हुआ है, बिल्कुल। बुंदेलखंड रेडियो के सभी श्रोताओं में जो अभिनंदन करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। आपने जैसा प्रश्न किया कि बुंदेलखंड क्षेत्र के युवा, विशेष तौर पर जो लोग 12वीं पास करने के बाद अपने कैरियर की राह पर खड़े हैं और उनको ये विभूचन है कि अब हम कहाँ जाएं, किस क्षेत्र को अपनाएं,

0: ऐसे में उन युवाओं का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि वो मीडिया क्षेत्र को अपना सकते हैं। मीडिया क्षेत्र आज इतना व्यापक है और ये मीडिया डिसिप्लिन अपने आप में एक स्थापित डिसिप्लिन हो चुका है। देश के न सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बल्कि अनेक राज्य विश्वविद्यालयों में भी पत्रकारिता एवं जनसंचार के विभाग हैं, जहां पर की प्रशिक्षित अध्यापक लोग रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, पत्रिकाओं, वेब मीडिया, न्यू मीडिया, डिजिटल मीडिया और रेडियो जॉकी बनने के सपना, बहुत सारे युवा हमारे श्रोता जो इस रेडियो बुंदेलखंड को भी सुन रहे हैं, युवाओं का बहुत ग्लैमर होता है कि या तो वो टेलीविजन में एंकर बन जाएं, कार्यक्रमों को प्रस्तुत करें, या रेडियो में लोग उनकी बातों को सुने। यदि आपकी आवाज में माधुर्य है, मेलोडियस वॉइस है, आपकी वॉइस कल्चर बहुत अच्छी है, आपको संचार कौशल बहुत अच्छा है, बोलने की कला है और आपके पास जनरल अवेयरनेस है, आपके पास आत्मविश्वास है, तो आपको रेडियो जैसे मीडिया क्षेत्र में रेडियो जॉकी, रेडियो प्रोग्राम प्रेजेंटर, रेडियो प्रोग्राम कंटेंट राइटर, आप इसके आलेखक मतलब स्क्रिप्ट लेखक जिसको हम लोग स्क्रीन प्ले राइटिंग टेलीविजन में कहते हैं, इसी के साथ आपके लिए टेलीविजन माध्यम है, टेलीविजन में आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, एक बहुत ही ग्लैमरस मीडिया है जहां पर ना सिर्फ आप टेलीविजन समाचार चैनलों में रिपोर्टर एंकर बन सकते हैं, आप उसमें करस्पोंडेंट बन सकते हैं, आप उसमें पीस टू कैमरा कर सकते हैं, आप उसमें समाचारों की गैदरिंग कर सकते हैं, बल्कि आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बन सकते हैं, आप फ्रीलांस जो है डिजिटल फिल्म मेकर बन सकते हैं, और उसके लिए आपको कोई बहुत महंगे कैमरे की जरूरत नहीं है। जैसा आपको पता है कि आजकल डिजिटल युग है, मोबाइल से लोग फिल्में बना रहे हैं, रील बना रहे हैं, और इंटरनेशनल, नेशनल और आपके रीजनल जो साइंस फिल्म फेस्टिवल होते हैं, यूथ फिल्म मेकिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत सारे कॉलेज और इंस्टीट्यूशन में भी जो है सिनेमा और छोटे शॉर्ट वीडियो रील कॉम्पिटिशन होते हैं, वहां आप अपनी प्रतिभा, अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन बहुत ही सटीक और सक्षम तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा अवसर आपके पास वेब मीडिया का है, जिसको हम कंप्यूटर मीडिया भी कहते हैं या इंटरनेट आधारित मीडिया कह लीजिए, हम कन्वर्जेंस मीडिया के नाम से भी उसी को जानते हैं, और डिजिटल मीडिया भी उसी को कहते हैं, जो हमारे बड़े स्क्रीन से आज हाथ में सभी के बच्चों के, युवाओं के, विशेष तौर पे जो मोबाइल है वो उनका कन्वर्जेंस मीडिया है, डिजिटल मीडिया है। मोबाइल है, छोटे स्क्रीन पर बहुत सारे सीरियल्स देखे जाते हैं, फिल्म में भी लोग डाउनलोड करके देखते हैं, बहुत सारी रील्स आती हैं, आप उसमें YouTube पे बहुत सारे कंटेंट और इंटरेस्टिंग स्टोरी देखते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव स्टोरीज हैं, एजुकेशनल और इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स भी आप वहां देख सकते हैं, किसी पर्यटन क्षेत्र के बारे में अच्छे से आप उसमें रिपोर्ट कर सकते हैं, आप किसी विषय को भी गहराई से समझा सकते हैं, आप एनिमेशन की सहायता करके भी, तो एनिमेशन, मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स, वेब मीडिया, टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट, जिसको मुद्रित माध्यम, जो हमारा 100 साल से भी अधिक समय से मुद्रित माध्यम है, वहां पर आप जो है अखबार हैं, और अखबारों में ना सिर्फ अंग्रेजी या हिंदी अखबार हैं, आज तो क्षेत्रीय भाषाओं में अखबार हैं। अभी आप देखेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो NEP 2020 आई है, उसके बाद से युवाओं को क्षेत्रीय भाषाओं में हम व्यावसायिक या प्रोफेशनल शिक्षा की बात करते हैं, तो ऐसे में हमारी बुंदेली भाषा हो, हमारी अपनी बघेली भाषा हो, हमारी अपनी अन्य, चाहे हमारी निमाड़ की भाषा हो, मालवी भाषा हो, उन सब स्थानीय भाषाओं में आज बढ़ चढ़ कर होता है, और उसका सबसे सटीक उदाहरण हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र की बिन्नू रदानी को आप लोग यूट्यूब पे देख रहे होंगे, धमाल वे खूब कर रही हैं और खूब लोगों ने सुन रहे हैं और उनके श्रोता जने भी खूब हैं। तो बिन्नू रानी से प्रेरणा लेकर हम सब युवाओं का आह्वान करते हैं कि वे भी अपने बुंदेलखंड क्षेत्र की, अपने घर की, अपने बुंदेलखंड की माटी की बिन्नू रानी जरूर बने।
1: बिल्कुल सर, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि हम देखते हैं कि पत्रकारिता क्षेत्र में भी कई सारे मतलब कोर्स चलाए जाते हैं, जैसे कि आपने बहुत सारे कोर्सों के बारे में हमारे युवा साथियों को जानकारी दी, खासतौर पर 12th के बाद, जैसे कि इस क्षेत्र में पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारा युवा साथी जाना चाहता है, तो कौन से ऐसे कोर्स हैं जिसको आसान तरीके से और किस किस क्षेत्र में वो कोर्स किए जाते हैं, वो सर विस्तार से।
0: मैं आपकी पुनः प्रशंसा करूंगा, दूसरा प्रश्न भी आपने युवाओं के हित में बहुत सटीक और बहुत अच्छा किया हुआ है, मैं इस बात पर आने ही वाला था। हमारे मखला चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, जो अपनी इस समय द वीक और इंडिया टुडे रैंकिंग में टॉप 10 मीडिया इंस्टीट्यूट में जाना जाता है, वहां पर ढेर सारे पाठ्यक्रम हैं, उनके विस्तृत विवरण के लिए मैं सलाह दूंगा कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के और रेडियो बुंदेलखंड के सुनने वाले श्रोता

0: सजन mcu.ac.in वेबसाइट को विजिट करें। हमारे भोपाल मुख्यालय परिसर है, इसके अलावा हमारा दतिया परिसर है, हमारा बघेलखंड में रीवा परिसर है और निवाड़ में हमारा खंडवा परिसर है जो, और इसी तरीके से हमारा एमसीयू दर्शन टेलीविजन स्टूडियो भोपाल में और रेडियो करमवीर भी है, तो वो भी युवाओं को प्रैक्टिकल करने के लिए है। रहा ट्वेल्थ पास विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम का, तो हमारे पास बैचलर कोर्स जिनको हम यूजी पाठ्यक्रम कहते हैं वो एनईपी आधारित 4 वर्षीय हमारे यूजी पाठ्यक्रम है। दतिया परिसर में हमारे पास बीए जनसंचार पाठ्यक्रम है और साथ ही बीबीए मीडिया बिजनेस मैनेजमेंट हम दतिया परिसर में दे रहे हैं। खंडवा और रीवा परिसर में भी हमारे बैचलर पाठ्यक्रम है, और हमारे विश्वविद्यालय के बैचलर पाठ्यक्रम की हम बात करें तो हमारे पास बीएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हमारे पास बीए जर्नलिज्म एंड क्रिएटिव राइटिंग में है जिसको हम बीए जेसीडब्ल्यू कहते हैं। इसके बाद हमारे पास बीए इन मीडिया रिसर्च है, बीए इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन है, बीएससी फिल्म प्रोडक्शन है, बीएससी मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स में है, बीएससी एनिमेशन में हमारे पास बीए मास कम्युनिकेशन है, बीए इंग्लिश जर्नलिज्म है, और हमने बीए हिंदी पत्रकारिता और अनुवाद प्रौद्योगिकी में भी इसी वर्ष से शुरू किया है क्योंकि एनईपी में हमारी भारतीय भाषाओं पर काफी जोर दिया गया है। तो हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर के जी सुरेश जी ने, जो कि भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक थे, उस समय भी उन्होंने भारतीय भाषाओं पर बहुत काम किया था और उसी से प्रेरणा करते हुए उन्होंने इस अकादमिक सत्र 2024 में भारतीय भाषा विशेष तौर पर हिंदी एवं अनुवाद प्रौद्योगिकी, हिंदी एंड ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी का एक बैचलर कोर्स शुरू किया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अपनी इंटरेस्ट के अनुसार बहुत सारे वैरायटीज ऑफ प्रोग्राम हमारे पास यूजी हैं, और इसी तरीके से हमारे पास मास्टर्स प्रोग्राम है जिसमें किसी भी स्नातक, चाहे वो आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, होम साइंस का हो, फार्मेसी का हो, इंजीनियरिंग का हो, साइंस का हो, वो यहाँ पर एडमिशन ले सकता है। उनके लिए एमए प्रसारण पत्रकारिता है, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म है, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, एमए इन डिजिटल जर्नलिज्म है, एमए इन प्रिंट जर्नलिज्म है, एमएससी मीडिया शोध है, उसके बाद हमारा एमएससी न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी है, फिर हम एमसीए कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी देते हैं, हमारे पास एमबीए इन मीडिया बिजनेस मैनेजमेंट है, हम एमबीए भी ऑफर करते हैं, एमए इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस भी है, एमएससी फिल्म प्रोडक्शन है, एमए मास कम्युनिकेशन है, हम लोग एमलिव और बीलिव पाठ्यक्रम भी ऑफर करते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ मीडिया पाठ्यक्रम, और हमारे पाठ्यक्रमों की एक विशेषता है कि हम लोग हर 2 साल में उनको अपडेट करते हैं, उनको मीडिया इंडस्ट्री की मांग के अनुरूप उनको अद्यतन करते हैं, अपडेट करते हैं, और हमारे यहाँ पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं हाईली प्रोफेशनल हैं, और बीच बीच में विशेष व्याख्यान है मास्टर क्लासेस के लिए हम इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स को बुलाते हैं, विद्यार्थियों के एजुकेशनल विजिट के लिए उनको टेलीविजन स्टूडियो है, प्रिंटिंग प्रेस है, रेडियो स्टेशन है, वहां की भी विजिट कराते हैं। बहुत जल्द ही हमारे दतिया परिसर के विद्यार्थी भी आपके रेडियो बुंदेलखंड का विजिट करेंगे, और हम इसी तरीके से अपने विद्यार्थियों के व्यवहारिक कामों के लिए उनको इंटर्नशिप पर भी अटैच करते हैं। तो समग्रता में हम मीडिया शिक्षा देने का प्रयास अपने परिसर में विद्यार्थियों को, ना सिर्फ हम मीडिया शिक्षण देते हैं बल्कि उनका चहुमुखी विकास 360 डिग्री उनका हम डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं, उनकी जीके की तैयारी करवाते हैं, उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार कराते हैं, उनको हम कैमरा फेस करने की टेक्निक सिखाते हैं, पीस टू कैमरा उनको सिखाया जाता है, उनको वक्तव्य कला जो है उनको मंच पर जाकर अभिव्यक्ति की सिखाते हैं, बॉडी लैंग्वेज पर हम लोग बहुत फोकस करते हैं कि आप अपने गेस्चर्स को, पोस्चर्स को, फेशियल एक्सप्रेशंस को, आई मूवमेंट्स को कैसे कर सकते हैं, आर्ट ऑफ इंटरव्यू कैसे करें, इंटरव्यू कैसे लें, इंटरव्यू कैसे दें, और आप में कम्युनिकेशन स्किल कैसे हो, इन सब बातों पर दिया जाता है। जैसे आपके रेडियो माध्यम में आवाज के आरोह अवरोह को, वॉइस मॉड्यूलेशन को, वॉइस कल्चर को, वॉइस डिलीवरी को, वर्ड्स को, क्योंकि कानों का माध्यम है तो इसमें आप रिपीट नहीं करें, इसमें आपके उच्चारण की शुद्धता चाहिए, भाषा की सरलता चाहिए, सटीक चाहिए, साथ ही एक गति ऐसी चाहिए कि श्रोता आराम से सुन पाए, क्योंकि उसको दोबारा सुनने का, उसका अर्थ समझने का अवसर नहीं है जो प्रिंट माध्यम है। रेडियो माध्यम बहुत ही अलग माध्यम है, तात्कालिक माध्यम है, ताजा माध्यम है, क्योंकि इसमें इमीडिएसी का महत्व है।
1: बिल्कुल सर,
0: इसमें कोई भी अंतरवस्तु को आप बहुत तत्काल और ताजा अपने श्रोताओं तक पहुंचा सकते हैं, और ये एक ऐसा माध्यम है कि आपका श्रोता अपने काम करते हुए

0: सकता है वो अपने ऑफिस में, यात्रा के दौरान कार चलाते हुए, अपने दफ्तर में, इवन गृहिणी अपने घर में भोजन पकाती हुई रेडियो माध्यम को सुन सकती है। इसलिए आज रेडियो माध्यम जो हमारा 1927 में भारतीय प्रसारण सेवा से जिसकी शुरुआत हुई थी, आज भी लगभग 100 वर्ष होने को है। अगले तीन हम लोग 97 वर्ष रेडियो प्रसारण के भारत में कर चुके हैं और रेडियो माध्यम आज भी पॉपुलर है। और हम देख रहे हैं कि देश में सामुदायिक रेडियो और कम्युनिटी रेडियो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण जो हमारा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री, वो इन सब चीजों को प्रोत्साहित करती है। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे मध्य प्रदेश का पहला बुंदेलखंड क्षेत्र का रेडियो बुंदेलखंड स्टेशन से आज मैं इस कार्यक्रम को प्रसारित करने में आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए आभारी हूँ। और उन सभी श्रोताओं का मैं पुनः अभिनंदन करता हूँ जो आज इस रेडियो बुंदेलखंड के इस लोकप्रिय कार्यक्रम से जुड़े हैं।
1: सर, इसमें से बस चूंकि आपका समय अमूल है, हम जानते हैं सर, इसमें से भी दो प्रश्न निकल के आते हैं। एक तो हमारे जो युवा साथी रहते हैं उनको मतलब ये रहता है कि हम लोग कोर्स करते रहें, साथ साथ में हमारे हाथ में जॉब होनी चाहिए, अच्छी से जॉब होनी चाहिए। दूसरा ये कि ये रहता है कि वो लोग ये नहीं चाहते हैं कि हम बैचलर डिग्री कर रहे हैं तो उसमें 3 से 4 वर्ष लगता है तो उतना समय नहीं है। ये शॉर्ट टर्म ऐसे कोई कोर्स चलाए जा रहे हैं आपके माध्यम से कि वो उसको भी करते रहें और उसको अपना जॉब को भी देखते रहें।
0: ये जी, हम लोग चूंकि एक विश्वविद्यालय व्यवस्था के तहत है, उच्च शिक्षा अध्ययन के तहत हमारे डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, यूजी प्रोग्राम्स और पीजी प्रोग्राम्स हैं, तो उन सब की अवधि, तो उसमें डिप्लोमा प्रोग्राम हमारा 1 वर्ष का है, माखला चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के भोपाल परिसर में सांध्यकालीन पाठ्यक्रम है, जिनको आप mcu.ac.in पे जाके डिटेल विस्तृत विवरण देख सकते हैं। वहां पर हमारे डिजिटल मीडिया, रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन जैसे भी कार्यक्रम है। और साथ ही हम जो है दतिया परिसर में बहुत जल्दी, वहां पर अभी माननीय कुलपति जी एक कमेटी बना के उस पर तय कर रहे हैं कि यहाँ पर हम एक्टिंग में और रेडियो जॉकी भी यहाँ पर प्रस्तावित है, क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र के युवाओं में बहुत प्रतिभा है। बिन्नू रानी जैसे हमारे जो आज 8वीं पास हमारी बालिका धूम मचाई हुई है, तो उससे प्रेरित होकर अभी बहुत सारे युवाओं ने ये बात, मैं पिछले 2 दिनों से दतिया परिसर में हूँ, तो विद्यार्थियों ने चर्चा के दौरान ये बात सामने आई कि यहाँ पर फिल्म एक्टिंग को लेके और यहाँ पर रेडियो जॉकी के पाठ्यक्रमों की काफी मांग है, तो हम लोग भोपाल में इस पे विचार करके जल्दी यहाँ पर सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम रेडियो जॉकी पे, आरजे पर और एक्टिंग पर करने पर विचार कर रहे हैं। वैसे विश्वविद्यालय समय समय पर अल्पावधि पाठ्यक्रम भोपाल में आयोजित करता है, अगर दतिया परिसर में आपके रेडियो बुंदेलखंड के संयुक्त तत्वाधान में सहयोग से यदि बहुत सारे युवा सहयोग करेंगे, अभिरुचि दिखाएंगे और आप यदि हमसे सहयोग चाहेंगे तो हम अपने दतिया परिसर में आपको रेडियो जॉकिंग और रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन के ऊपर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 दिन का, 1 हफ्ते का, 15 दिन का, जैसा भी आप उपयुक्त संगे 2 हफ्ते का हम लोग कर सकते हैं। और बहुत ही उसमें मतलब विद्यार्थियों से हमारा कोई उद्देश्य कमाने का नहीं होता है, तो हम उसको निशुल्क आयोजित कर सकते हैं, पंजीयन शुल्क वगैरह कुछ न्यूनतम उसमें हो सकता है, और उसके लिए बाकायदा विश्वविद्यालय से आपको जो भी प्रतिभागी होंगे उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा और रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन के लिए उनको जो भी आवश्यक सामग्री है, जो प्रशिक्षण सामग्री है, किट वगैरह है, वो भी हम देने का प्रयास करेंगे। तो ये आपकी जब इस तरीके का प्रस्ताव आएगा तो हम लोग जरूर उस पर विचार करते हैं और हम लोग बुंदेलखंड क्षेत्र के युवाओं के लिए यदि सेवा करने का अवसर रेडियो बुंदेलखंड के सहयोग से हमें प्राप्त होता है तो हम लोग को बहुत खुशी होगी।
1: बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने छोटे समय में ही बहुत सारी हमारे युवाओं को प्रेरणादायक बातचीत बताई है, साथ साथ में उनके कैरियर को लेकर, उनके कैरियर काउंसलिंग को लेकर और खास तौर पर बहुत सारी ऐसी आपने बातचीत बताई है जिससे हमारे युवा साथी बिल्कुल हिचकिचाएंगे नहीं और इस क्षेत्र में अपने भविष्य बनाने के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर,
0: रेडियो बुंदेलखंड और यहाँ की टीम का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, आभारी हूँ, और अपने बुंदेलखंड क्षेत्र के भाई बहनों को, बिन्नुवन को हम यही कहूंचा कि वे आए और जा क्षेत्र में बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ, जैसे बिन्नु रानी धमाल कर रही, आप और रन भी धमाल करें, जय बात के साथ, जय राम जी।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में। और अभी आपने डॉक्टर संजीव गुप्ता जी को सुना जो HOD है माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल से, और उन्होंने बड़ी बखूबी तरीके से पत्रकारिता के क्षेत्र में किस तरीके से हमारे युवा साथी अपना कैरियर भविष्य बना सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, उस विषय को लेकर विस्तार से चर्चा की है। बहुत अच्छी चर्चा इन्होंने की है इस कार्यक्रम के माध्यम से, और हमें आशा है कि हमारे श्रोता साथी समझ गए होंगे कि किस तरीके से पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारे युवा साथी अपना कैरियर अपना भविष्य बना सकते हैं, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि बहुत सारी संभावनाएं इस क्षेत्र को लेकर, और आज देख रहे हैं कि सोशल मीडिया बहुत बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रहा है, और खासतौर पर रील हुई और फेसबुक हुआ ट्विटर हुआ, साथ साथ में छोटे छोटे चैनल भी हमारे यूट्यूबर चैनल जिसे कहा जाता है वो भी बहुत सारे खुल गए हैं। तो कैसे अपना भविष्य बना सकते हैं छोटी छोटी वीडियोस बनाकर अपनी सच्चाई को दिखाकर, क्योंकि पत्रकारिता एक बहुत बड़ा संचार का माध्यम है, किस तरीके से अपना भविष्य बना सकते हैं इस विषय को लेकर बड़े विस्तार से उन्होंने बात बताई है। इसके लिए डॉक्टर संजीव गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आशा करते हैं कि ऐसे ही आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो। साथियों इसी के साथ हमारा वक्त हो चुका है आज के हमारे इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम से जाने का। कैसा लगा कार्यक्रम हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पे, नंबर है हमारा 92-19-20-77-49, और हमारा पता है जो आप चिट्ठी के माध्यम से हमें अपने बातचीत को भेज सकते हैं। चिट्ठी पत्रिका का पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तेगला के पास ओरछा, और आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम से जाने की इजाजत। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, और चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक प्यारे से गीत को। नमस्कार।

0: धकने
1: कहने लगी, अगर मेरे पास पहनने के लिए वस्त्र कपड़े नहीं होते तब भी मैं फटे पहनकर अपना लेती। और कहा अपना लेती कठिन, अपना लेती कठिन, कंठ को की गली बिलखे ले ही मौत के।

0: यार।
1: और कहने लगी कि अगर होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी

समय पे आपके बीच में कौन सा कार्यक्रम आवे वालो हैगो, तो हम लेके हाजिर हो गए हैंगे आपको अपनो मनपसंद कार्यक्रम स्त्री एक कहानी मेरी भी। ई कार्यक्रम में अपने सब साथी जानत भी हैंगे कि अपन उन्हें एक महिला से बात करत हैंगे और उसे पूरे जीवन की गाथा को सुनत हैंगे कि उनको कैसो सफर रहो है वो पूरे एक जीवन को, उनने पढ़ाई कितने तक करी हैगी और साथ में उनकी शादी कब भई थी और साथ में जाना कि भी जब शादी उनकी भई थी तो भी शादी के बारे में जाना था थी कि नहीं। देखो जिसे शादी उनकी हो रही थी उनको ने देखो भी है तो या नहीं देखो, तो कहे कि आज के समय की अगर अपन और बात करें तो आज तो देख भी तो बाद में जाते, पहला मोबाइल नंबर पहले पहुंच जाता ही, और मोबाइल नंबर जब पहुंच जाती तो बातें भी खूब दम से होती और फिर देख भी की तो बातें अलग हैगी कि देख तो एक दो बार लेते ही हैंगे। लेकिन पहले के समय में अपनों ने देखो कि जितनी भी कहानी अपनों ने स्त्री में सुनी हैगी उनने कोनों ने भी जानी गई कि हमने देखो हतों ने जिनसे हमारी शादी हो रही थी, बस परिवार वाले देखिया या को के जैसे कि जो मानदान रथ हैंगे बेओरे देखे आते ही, तो लड़की को देख भी की कोनो जरूरत नहीं पड़त हैगी। तो आज की कहानी में अपन और बात करेंगे लक्ष्मी जी से जो कि राधापुर की रहने वाली हैंगी, और राधापुर की लक्ष्मी जी अपन को बता रही हैंगी कि की तरह से उनको जीवन रहो हैगो, और साथ में भी बता रही हैंगी कि 20 साल से भी आंगनबाड़ी में नौकरी कर रही हैंगी, तो उनके जीवन के का अनुभव उनको रहे हैंगी और पढ़ाई को लेके भी कितनी सोचती हैंगी, ये सब बातें अपन और आज के ये कार्यक्रम स्त्री में करेंगे। तो चलो साथियों देर नहीं करा थेंगे, हम आपको सीधो ले चला थेंगे राधापुर जिते अपन लक्ष्मी जी की कहानी उन्हीं की जुबानी सुन रहेंगे। तो चला थेंगे राधापुर।

0: राम राम।
1: क्या नाम है अम्मा आपको?
0: लक्ष्मी नाम मेरा।
1: अच्छा, कहाँ रहती हैं आप?
0: राधापुर।
1: राधापुर में रहती हैं? क्या करती हैं अम्मा आप?
0: आंगनवाड़ी में काम कर
1: रहे। आंगनवाड़ी में होंगी आप? कितने साल से कर रही?
0: हम कर रहे 20 साल से।
1: 20 साल से?
0: हाँ, 20 साल से।
1: अच्छा, तो अम्मा आज हम आपसे आपके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। तो जैसे शुरुआत की बात करें, आपको मायको कहते हैं?
0: हम मायको झांसी में है।
1: झांसी में कौन जगह?
0: झांसी में है गोविंद चौरा है, ढाल के नीचे। राज डॉक्टर आपने सुना हूँ कभी?
1: हाँ, हाँ।
0: उन्हीं के नीचे रहते थे।
1: अच्छा, उन्हीं
0: हाँ,
1: के नीचे हाँ, रहते हाँ। थे। आपके परिवार में को है? तो
0: हमारे परिवार में हमारे भैया थे, भाभी थी, बहने थे, तीन बहने थे।
1: अच्छा, तो और मम्मी पापा?
0: मम्मी पापा थे।
1: अच्छा, आपके घर पे क्या काम
0: हो? वहाँ पे तो चौका बर्तन करते सब कहते हो। जगह जमीन नहीं होती, मजबूरी करते और बड़े बड़े लोगों को काम करे आते।
1: अच्छा।
0: मेरे पिताजी गुजर गए थे, हम लोग सब छोटे थे, हमारी अम्मा के लिए क्या करती।
1: हाँ, सही बात।
0: तो अम्मा ने सबको लगा दो, तो कोई को 10 रुपया महीना से, कोई को 5, जब समो छोटो।
1: अच्छा, 10 रुपया?
0: हाँ, 10 रुपया से। अच्छा। हमारे भैया को 15 रुपया में लगते, हमें 10 बच्चा खिलाते उनके।
1: अच्छा।
0: खाना देती वे और कपड़ा मपड़ा देती, 10-5 रुपये 10 रुपये दे देती महीना भर में।
1: तो मतलब इस तरह से चलत रहता
0: है।
1: अच्छा, अगर आप आपके बचपन की बात करें तो बचपन में और का काम आपने? पढ़ाई कितने तक करी आपने?
0: हमने पढ़ाई 5 तक करी।
1: 5 तक पढ़ाई करी है। हम आपकी उम्र कितनी हुई है?
0: हमारी उम्र 2 साल कम रह गई, 60 साल।
1: 60 साल में 2 साल कम रह गई आपकी। अपने बचपन में काम तो जैसे आपने बताया कि काम भी करी, लेकिन उसमें और छोटो जो बचपन होते ही, जब मान लो अपन काम करवे की उम्र नहीं होती,
0: जब ध्यान थोड़ी रहा, जब तो खेलता ही खाता रहा।
1: हाँ, तो वही खेलवे की बात हम कर रहे हैं कि आपने खेल कौन कौन से खेले?
0: अब खेल अब का कंची खेल रहा है, कहीं रेडी खेल रहा है, ये खेल खेलते थे। और क्या?
1: अच्छा,
0: चपट्टा खेल रहा है।
1: चपट्टा का
0: सावन को मुझे खेला, चपेटा कलर।
1: अच्छा अच्छा,
0: जी खेल रहे।
1: तो सावन में आप गीत भी गाती हैं? हाँ। खेलत में गीत, एक आध गीत सुनाओ।
0: हम नहीं जाना तो मैंने गीत में।
1: अच्छा, गीत ही नहीं आते?
0: नहीं।
1: पहले तो गाती नहीं हो आप?
0: अबे भूल गए, अब तो बुढ़ापो ऐसे कुछ नहीं आता।
1: इतने बुढ़ापो नहीं है आपको? 60 साल हो रही, लेकिन बुढ़ापो नहीं लगा था आपको?
0: नहीं, बुढ़ापो का ही नहीं है।
1: तो कौन सा गीत गाती
0: है? कौन नहीं गाते हैं
1: आप? गाते नहीं। अच्छा, आपकी सहेली कौन कौन थी?
0: हमारी सहेली अब सब बूढ़े हो गए, अब सहेलियन को जाने कहाँ कहाँ गई। को अंगूरी ना तो काऊ को पुष्पा ना तो ऐसे सबके नाम आते सबके, कोई की कहीं शादी हो गई, कहीं की कोई की कहीं हो, अपने अपने घर चली गई सब।
1: अब मिलती हूँ आप लोग?
0: हाँ, मिल जाते
1: हो? मिल जाते, इकट्ठे हो जाते,
0: कभी कभी इकट्ठे हो जाता। खुशी तो जो उसे

0: मतलब मायके में आप तो सब बहने मिला तो अच्छा लगा,
1: तो अच्छा लगता है,
0: लगा के भी लगा।
1: अच्छा अम्मा जो बताओ कि आपके समय में पहनावे कौन कौन सी थी, मतलब पैरत का कपड़ा कौन कौन सी चलाती?
0: कपड़ा पहले तो देखो गरीबी हती सो चड्डी कपड़ा की सिला के पे रखते हैं और फिर आके पे रखते हैं और फिर आके नहीं मिली तो बिस्कुट जो बिस्कुट है पहन लेते हैं है? ये पहन लेते हैं और हम तुमने फिर आके दे रहे थे वे पहन लेंगे और ये ही पहरा होता
1: है। मतलब कोनो अलग से नहीं
0: है, कोनो अलग से नहीं है।
1: तो अच्छा तो अब हम आपसे बात करें, आपकी शादी कितनी उम्र में?
0: हमारी अब हमें तो ध्यान नहीं है बहन कितने उम्र में हमारी भाई आती,
1: तो मतलब कछु तो अंदाजा हुई है। जब आप जाना था शादी के बारे में?
0: नहीं जानते जब हमारी शादी हो गई थी,
1: बिल्कुल नहीं जानती। अच्छा जी से आपकी शादी हो रही थी आपने देखो तो
0: हाँ?
1: पहले से देखो तो
0: हाँ? नहीं नहीं पहले कहाँ देखा देखते हाँ, पहले ना कोई मोड़ी देखा तो ना कोई मोड़ा देखा था।
1: अच्छा
0: एक से तो हते ही हमारे बाप माता ने 8-9 साल के साथ हम 9 साल के हमारे पिताजी गुजर गए थे, 9 साल की शादी कर रही थी। अच्छा। तो जिन जिन को काम करते हमारी माताजी ने कही क्या 500 रुपया दे दो मोड़ी को भी आप अन्य बोली तो मैं 10-10 रुपया मिला तो 500 रुपया ले लो 500 चुका। उन लोगों ने सबने 100-100 रुपया पूर्ण में दाए थे।
1: अच्छा
0: तो वही मत आई मत
1: 500 रुपया
0: नहीं सबसे जैसे कछु कछु लोगों ने ऐसे पुनो आती है देखे उन लोगों ने और धारा दे दे वैसे ही के बिटिया को पुन ब्याह हो रहा पुण्य में दे दो पैसा। अच्छा, बड़े बड़े सेठ लोग
1: तो
0: सही ऐसे हमारा ब्याह होगा।
1: जब आपकी ब्याह होगा इसके बाद कितने आपकी ससुराल दे दें राधापुर में भाई है
0: ना? हाँ, राधापुर
1: में ससुराल रहेगी आपकी। तो आपने पहली बार जब कौन कौन सी रस्में आपके भाई हैंगी, जैसे पहले दिन तेल मंडप
0: पहले मंडप तेल।

0: चावल को बच्चू पता ही नहीं कहाँ ले दिया
1: तो मलवा के नहीं आचे और खड़ा होकर ला हमारी बुआ ने तो ले चावल मार दे सब ने चावल
0: के बाद
1: बस फिर बाहर चलो कर लड़का फिर पंगत मंगत होने लग पंगत मंगत भाई फिर चढ़ाओ मंगाओ चढ़ो फिर
0: कहाँ रे कहाँ चढ़ा तो आप
1: हमें पेज ना चढ़ी थी एक किलो के वो खंग वज्जा
0: एक किलो
1: के पेज ना हाँ, खंग वज्जा और जो इतने पैर अत्ते पैर नहीं थे
0: बाजू बंद
1: हाँ दो चढ़े थे
0: रखे
1: हो आप हाँ तारी बहन की बात छे
0: छे
1: लड़का होगा छे लड़का के ब्याह कर ले कहाँ से
0: आ रहे हो अच्छा आपकी विदा कहाँ है भाई दी
1: हमारी डोल में डोल जब डोल ही नहीं रहा
0: हाँ
1: भाई में भाई की विदा
0: उतने से इतना ही तंग जहाँ
1: से नहीं उतने से तो फिर बैलगाड़ी में आए थे बैलगाड़ी में आए थे अच्छा इसके पहले आपने बैलगाड़ी में बैठी थी
0: अच्छा बैलगाड़ी से झांसी से कैसा लगा तो आपको मतलब विदा हो रही आपकी और बैलगाड़ी से हुई
1: बैलगाड़ी से होती पहले बता सवाई की होती हम जी का पहले देते वाहन कहाँ थे और चा तक नहीं जाते खेलार तक नहीं जाते अब तो एक कदम नहीं रहा आदमी
0: अब तो अगर तुम्हें भी जाना है
1: अगर तुम्हें कारस देव न जाना तो गाड़ी
0: से
1: जाना
0: सही बात है तो फिर जब आप
1: विदा होके आई थे
0: ससुराल में
1: कुकू
0: मिलो आपको
1: ससुराल में सास ससुर जेठानी
0: अच्छा आपके में नंबर की
1: है थी? हम दूसरे नंबर के नंदन दो नंदन
0: की शादी हुई
1: हाँ
0: अच्छा शादी के बाद
1: बड़ी हती
0: बड़ी हती हाँ। अच्छा तो फिर आपके एते का करस में
1: वही
0: मतलब
1: कंकन झूटो हाथे लगे थे दो तीन चार दिन रहे थे फिर चले गए थे
0: खिचड़ी
1: बनाई थी
0: तो आपने खुद बनाई थी
1: नहीं बना पाई थी हमने हमारी जेठानी ने बना दी थी
0: अच्छा।
1: और चमचा से तरवा दी थी
0: नाम होगा
1: हाँ। तो और द्वारे में और अंदर
0: अच्छा और अंदर जैसे जब आपने खिचड़ी बनाई और सबने खाई तो फिर कहा करने मिलो तो
1: हमें नहीं एक कछु नहीं मिलो तो हमें तो और पैसा रखने पड़े थे चूल्हे में
0: हाँ ये उल्टा नहीं हो रहा
1: पहले देता ही है अबे भी दे था मोरन के
0: हाँ।
1: जैसे खिचड़ी बनो तो चूल्हे नो रखवा सा बहु से सास लेते भी भाई से
0: अच्छा
1: चाहे दस धरे चाहे ग्यारह हो चाहे एक सौ एक रख दे लेकिन वो सास ले और इंदार तो और इन पे रखत बहु
0: अच्छा।
1: तो बेबी सास ले
0: अच्छा
1: जी की सास ना हो तो जेठानी
0: में तो जैसे पहले एक अब एक रसम होती जूड़ा खुलते ही आपके समय में खुलत
1: नहीं हमारे समय में नहीं
0: खुलत जूड़ा नहीं खुलते अच्छा आपकी
1: जो छोड़ा खुलते जो
0: छोड़ा खुलते
1: जो छोड़ा
0: हाँ तो ये भी पैसा
1: साँच खोल सकती है
0: खोल सा खाती के
1: हाँ खोल सा खाती साँच
0: ये तो काम हाथ हो तो मतलब
1: जब साँच दे में आ जा तो जो छोड़ा खोल सकती साँच कछु महत हो
0: जी अच्छा आपको नहीं पता
1: ना छोटे आते से कछु दे
0: आपके काम जब आप दूसरी बार आए अपने ससुराल में फिर कैसे काम कराती जेठानी के संग मिल के कराती है लड़ाई होती
1: जेठानी के संग कराते लड़ाई का कभी
0: लड़ाई नहीं हुई आप
1: नहीं हमारी नहीं हुई जेठानी
0: सास से
1: ना सास से भाई कहो ना
0: काय नहीं होती आप सीधी हती के दो जने भी
1: दो ही एक से आते मिलके कर लेते हो बस सबने फिर से आने होगा सो सब अलग अलग होगा
0: अच्छा और सासरी में का काम होती है आपकी
1: खेती होता है रात से खेती होती
0: अच्छा
1: पहले मोटर कहाँ थी रात ऐसे खेती होती तो रात चलाते रहते
0: अच्छा और जैसे जब खेती की आपने बात करी है कि तो आप सुबह से चक्की नहीं पी सकती
1: चक्की पी सकते हो सवेरे चार बजे से
0: कितने बजे उठती
1: हैं चार बजे उठ जाते है चार बजे से पी सकते सो पाँच छह किलो नाच पीस लेते
0: पाँच छह किलो रोज पीस
1: हाँ रोज इतना ही जेठानी पी सकती
0: तो भी कभी पी सकती आप जैसे सुबह से उठ के पी सकती
1: चार बजे से वे पी सकती
0: संगे पी सकती
1: ना कमो संगे कमो अलग अलग पी
0: सकती अच्छा फिर उनके बाद चक्की पीसने के बाद काका काम
1: फिर गोबर मोबर डालते
0: कितने गाय भैंसे होती आप
1: पहला दस बारह गैया होती
0: अच्छा
1: गोबर मोबर डालते झाड़ा झूड़ी करते एक फिर फिर एक जनी रोटी बनाने लगती एक जनी काम करने लगती
0: अच्छा ऊपर हाँ
1: फिर कुआ पे आठ बजे तक निकल जाते चलाते दिन भर
0: अच्छा वो हाथ से बहाने आते
1: नहीं बैलेंस से घड़िया नहीं आती लोहे
0: की
1: भाई चलाते रहते कब हम सात जेठानी चलाती कब हम चलाते रहते
0: तो मतलब लड़ाई नहीं होती अच्छा आपकी कितनी मोड़ी मोड़ा है
1: हमारा छह लड़का
0: और लड़की
1: लड़की नहीं है
0: लड़की नहीं है

0: परेशानी हती से कुछ नहीं पढ़ा।
1: अच्छा।
0: पाँच पाँच पढ़ा जाइए स्कूल में बस।
1: अच्छा सरकारी स्कूल में। तो अब सबकी शादी हुए?
0: हाँ सबकी हो गई, सब नाती न तुलन की हो गई।
1: अच्छा नातीन की
0: भी कितनी नाती है? छह नाती है छह नातने।
1: अच्छा तो
0: बिलाती को मतलब बिलात
1: बड़ा परिवार है।
0: हाँ तो छह लड़का है तो दो दो है सबके।
1: अच्छा,
0: और एक के चार है बड़े के, तीन मोड़ी है। मोड़ी तो आप बिरूबर हो गए, तीन ना मोड़ी के दो मोड़ी मोड़ा होगा, एक के छोटी एक के मोड़ा होगा, एक के मंजिले मोड़ा की के मोड़ी है मोड़ा है वो।
1: परिवार
0: है आपको अच्छा लगा थी तीन तीन
1: सब
0: जने
1: आ जाते
0: हैं
1: तो और अच्छा लगा
0: थी
1: है ना।
0: तो आप सुबह उठ के सब जगह लीपो पोतो झाड़ो चौक पूरो खेल
1: गाना गाते सब भूल गई
0: सब
1: भूल नहीं आते याद करने आते। बहुत बढ़िया आपकी बातें हमें लगी अम्मा। लेकिन एक बात और, आपने पूरी मतलब आंगनबाड़ी की नौकरी कब से कर
0: 20 साल से ज्यादा हो गई
1: है। जैसे आपने पढ़ाई 5 तक करी तो आंगनबाड़ी में कैसे है आपकी नौकरी लग गई?
0: आंगनबाड़ी में मैं लग गई थी।
1: कैसा लग गई थी मतलब?
0: पहले उनने इन्हें चार जनन के कागज दे थे भर के, तो सबने 200 रुपया में लगते।
1: अच्छा।
0: तो सब जनन ने कही 200 रुपया में का खा रहे हमें नहीं करने।
1: हाँ।
0: हमें नहीं करने से फिर बोली चाची तुम लग जाओ अभी 200 में रह कभी ज्यादा भी हो सके। इन्हें 350 में लगते हमें 200 रुपए के। फिर हम इनके ससुर बोले ला जाओ हम दे दे वो करें तो मैं 2-4 पहली नाच खा दे के लाने बज्जे का करब। फिर इनके ससुर दे देते 2-4 पहली नाच हम पानी भरे आते हैं तो फिर लगे रहे इनके तो पानी तो अभी भी अभी छोड़ दो हमने बना तो नहीं अभी।
1: अच्छा।
0: जब से हमने आंगनबाड़ी करी जब से पानी भर इनको लोग खावे पीवे की परेशानी से जैसे नहीं है तो जी दे तो सकते खाओ नहीं करते तो को दे रहा।
1: सही बात
0: है। दे रहा तो को भी ना
1: करो। और आज आपको कितनी मिल जाती मतलब आपको घर चला भी लाके मिल जाता आपको?
0: आप 5,000 हो गए ये 2-3 महीना नहीं 2,500 फिर 350 आए हमारे फिर 1500
1: धीरे धीरे बढ़ते चले गए आपके पैसा। बहुत बढ़िया। आपके पूरे जीवन को अनुभव कर रहा हो मतलब आप अपनी जिंदगी से आपने का सीखो?
0: हम जो खेती किसानी सीखी हो जब आंगनबाड़ी कर ली फिर सोचा
1: आपको क्या लगा कि पढ़ाई लिखाई अपने जीवन में ज्यादा महत्व दे
0: चौपे ने तो महत्व देखो आप सोच रहे हैं आदमी के जब पढ़ लिख लेते तो और अच्छे हो जाते लेकिन जब पैसे ही नहीं है तो कहाँ पढ़ा लिख रहे।
1: लेकिन आप सोचती हो ना कि पढ़ाई जरूरी है अपने जीवन के लिए।
0: अब जैसे पेट को तो रोटी नहीं है पढ़वे की का सोच रहे बताओ।
1: सही बात है। लेकिन सरकारी स्कूल में बहुत सुविधाएं मिल रही है आजकल फ्री किताबें मिल रही है
0: लेकिन अब मिल रही पहले कहाँ मिल रही।
1: हाँ पहले नहीं मिलती तो लेकिन अब मिल रही तो अभी के लाना पढ़ाई चाहिए है ना। बिल्कुल। तो अम्मा और का क्या वो चाहती हूँ आप अपनी तरफ से
0: और का कहा
1: मतलब हमारे समुदाय के लाने जो आप खुद सुन रहे हैं इस समय तो उनके लाने का संदेश दे वो चाहती है अपनी लड़की को पढ़ाए चाहिए कि नहीं
0: अपनी को तो सब हमारी मोड़ी सब 8-8 पढ़ी नातनी नाती पढ़े हाँ सब पढ़ रहे को पढ़ रहा हो को हुआ बड़ी बड़ी हो गई सब 7-7, 8-8 में करके छोड़ दो ब्याह पढ़ दो नातन की
1: बहुत बढ़िया
0: को पढ़ दो अब दो नाती पढ़ रहे के।
1: चलो बढ़िया अम्मा आपने बहुत अच्छी बातें बताई अपने पूरे जीवन के बारे में हमें बताओ ये बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद
0: धन्यवाद।
1: नमस्कार
0: नमस्कार।

रेडियो अपनी बात है, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे। दोस्तों एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर है आपकी अपनी रेडियो दोस्त वर्षा। और देखो साथी हरो, अभी अपन और सुन रहे थे लक्ष्मी जी को, जो कि राधापुर की रहने वाली हैंगी। इनसे अपन और ने जानो है वो कि इनके जीवन की का कहानी हती, कैसो इनको जीवन रहो है वो, और साथ ही में इनने अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में, इनको बचपन कैसो बीतो है वो, बचपन में जी खेल कौन कौन से खेला था थी, ये सब बातें अपन और ने जानी हैंगी। और साथ में इनने बताई हैगी कि 20 साल से जी आंगनबाड़ी में एक कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रही हैंगी। तो देखो पढ़ाई पहले इनने भले ही कम करी, लेकिन नौकरी इनकी लग गई जब बहुत अच्छी बात हैगी, क्या कि पहले तनक सी पढ़ाई को भी बहुत बड़ा महत्व हो, तो पहले नौकरी जो है आदमी इनको ढूंढती, लेकिन आज के समय में अपन और देखें तो आदमी नौकरी इनके लाने परेशान हो रहे थे, होते भटक रहे हैंगे। तो ऐसे अपने कैवे को जो मतलब है वो कि पढ़ाई अपने जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखत हैगी, पढ़ाई को सबसे पहलो महत्व दो। जैसे अपन और सोचन लगा थेंगे कि बिटिया बड़ी हो गई तो बस उकी शादी कर दो, या फिर बड़े हो के सिर्फ उनको चौका वासन करने आ है वो, घर को काम ही देखने आ है वो, लेकिन जब सोच अपनी जो हैगी वह तनक अपन को बदलने आए, पहले अपनी अपनी मोड़ियन को पढ़ाई जरूर करवावे, ज्यादा नहीं तो आप इंटर तक तो पढ़ाई उनकी जरूरी करवाने हैगी। ताकि आज देखो लक्ष्मी जी सोचती हैगी कि अगर उन्हें तनक और पढ़ाई करी होती तो भी हो सकता है कि कार्यकर्ता की जगह और अच्छी कोनो पोस्ट पे होती और उन्हें अच्छी एक तनख्वाह मिल रही होती, जिसकी वजह से उन्हें अपने परिवार चलावे में कोनो भी दिक्कत ना आती, को सहारा उन्हें नहीं लेना पड़ता। तो देखो अब अपना समय होते है वो आज के कार्यक्रम स्त्री एक कहानी से जावे को, लेकिन साथियों जो कार्यक्रम आप सबको कैसा लगो है वो, इमें आपकी का राय सुझाव हैगी, या फिर आपके भी गाँव में या आपके आस पास कोनो ऐसे लोग हैंगे या फिर ऐसी कोनो स्त्री हैगी जिनकी कहानी रेडियो के माध्यम से आप उन्हें सुनबो चाहेंगे, तो इके लाने हमें जरूर बतावे हमारे पते पे पत्र लिख के या फिर फोन के माध्यम से। पते के लाने हमारा पतो है वो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तकेला के पास ओरछा। और साथ ही आप हमें अपनी राय सुझाव फोन के माध्यम से भी दे सकते हैं, साथ में आप हमें SMS भी कर सकते हैं, और अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो व्हाट्सएप भी आप हमें कर सकते हैं। तो देखो कितनी अच्छी सुविधा हो गई हैगी, क्या आज के दौर में अपन देखें तो अपने सब साथी व्हाट्सएप को खूब एकदम से उपयोग कर रहे हैंगे और व्हाट्सएप ही चलाते हैं, तो अपन मैसेज भी एक कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप रिकॉर्ड करके भी कछु भी हमें भेज सका थेंगे अपने कार्यक्रम के बारे में राय सुझाव। तो देखो अब अपना समय होते गो आज के कार्यक्रम से जावे को, तो अपनी रेडियो दोस्त वर्षा को दे जावे की इजाजत, अपनी फिर हुई मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक आप ऐसे ही सुनते रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 अपना रेडियो अपनी बातें। नमस्कार, और चला चला सुनो आप गीत खो जिखो गा रहे हैंगे दिनेश सोनी।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलिहान में। और इस कार्यक्रम के माध्यम से खेती किसानी से जुड़ी बातचीत लेकर आते हैं। आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में एक विशेष वार्तालाप को हम सुनेंगे, चूँकि अपनी बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पानी गिर गया है और ऐसे में हमारे किसान साथियों को क्या समस्या आ रही है उस पर भी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बातचीत करेंगे। साथ साथ में हमारे किसान साथी, हमारे जो उजान पठा के विजय जी हैं, उन्होंने सवाल किया था कि हमारे जो धान की खेती, उन्होंने कुछ जगह हमारे धान की खेती डूबी हुई है, तो उसमें नैनो खाद देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उस विषय पर हम कल चर्चा करेंगे। चूंकि एक्सपर्ट आज उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो कल हम चर्चा करेंगे इस विषय को लेकर। लेकिन आज इस विषय जो समसामयिक चर्चा भी है कि क्या इस मौसम में क्या देखभाल, क्या किसानों को सावधानी, किस तरीके तैयारी क्या करना चाहिए, इस विषय पर बातचीत आप करेंगे। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से कार्यक्रम को। लेकिन इससे पहले हम सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: रही अपने पिता से, वो आत्मा कह रही है
1: पत्तो आने से पहले ही ढल जाती मैं।
0: अरे वक्त आता मैं चली जाती, आप मुझे विदा कर देते, किसी गरीब के साथ में भेज देते, और अगर इसके बावजूद भी दिक्कत थी तब

0: रोजगार।
1: और कहने लगी कि अगर मैं होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी,

0: वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलिहान में। और खेत खलिहान कार्यक्रम में साथियों हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं और समय समय पर मौसम आधारित जानकारी देते हैं। किसानों को किस तरीके से खेती में अपनी परिवर्तन करना चाहिए, क्या कुछ किस मौसम में कौन सी फसलों को लगाना चाहिए, कौन से बीज लगाना चाहिए, बीज उपचार की विधि, तमाम प्रकार की जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से देते हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा जी। आज हम जो आप देख रहे हैं कि अगर इस क्षेत्र की बात करें तो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, बहुत सारे हमारे किसान साथियों की फसल भी उन्होंने लगा दी है लेकिन बहुत सारी फसल नष्ट भी हो गई है। आज हम देख रहे थे, सुन भी रहे थे कि कई शहरों में अत्यधिक बारिश होने के कारण बहुत सारी फसलें नष्ट हो गई हैं। कई कई किसान साथियों ने अपनी फसलों को बो भी नहीं पाए हैं। लेकिन अब जायज के चूंकि अब समय आ रहा है कि हम कौन सी फसल लगाएं, अगर सब्जियों की बात करें तो कौन सी ऐसी सब्जी है जो इस मौसम में लगा सकते हैं, तो आज हम इस मौसम में कौन सी हम लोग सब्जियों को लगा सकते हैं, कौन सी ऐसी पद्धति है जिसको हम अपने क्षेत्र में अपने खेती में अपना सकते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद सर, और सभी किसान भाइयों को नमस्कार, राम राम।
0: तो डॉक्टर साहब हम जानना चाहेंगे कि इस मौसम में चूंकि बारिश बहुत ज्यादा हो गई है और इस मौसम में किसान साथी भी परेशान हैं, तो कौन सी ऐसी सब्जियां वो अपने खेतों में लगाएं ताकि उनकी जो आजीविका है वो चल सके।
1: जी सर, जैसा कि सर ने बताया है कि इस मौसम में सभी को पता है कि बहुत ज्यादा बारिश हो गई है, मतलब जरूरत से 2 गुनी तक बारिश हो गई है, जिसकी वजह से अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में लगी हुई सब्जियां और अदर फसलें भी सभी को नुकसान हुआ है। जिसकी वजह से क्या हुआ, कई फसलें तो पूरी तरीके से नष्ट हो गई और कुछ फसलें जो हैं जो 70 से 80% तक नष्ट हो गई हैं, जिसकी वजह से क्या है, बाजार में जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। अब किसान भाइयों को इसमें सुधार के लिए कुछ विधियाँ हैं जिसके द्वारा हम फसलों को नए तरीके से लगा सकते हैं और उनको अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।
0: जी बिल्कुल सही बात कही है कि हमारे किसान साथी सब्जियों को लगाकर उत्पादन अधिक ले सकते हैं। तो यही दिमाग में सवाल चलता है कि कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनको इस मौसम में हम लोग लगा सकते हैं और इसकी तैयारी हमें किस तरीके से करना चाहिए।
1: बिल्कुल सर, सर सबसे पहले हम बात करते हैं कि खरीफ सीजन जो अभी चल रहा है, जिसको हम रेनी सीजन भी बोलते हैं, इसमें क्या है कि बारिश बहुत लंबी चली गई है, जिसकी वजह से फसलों की बुवाई की विधियों में थोड़ा सा परिवर्तन करके, चूंकि जो सब्जियां हैं उनमें हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, मतलब हम पहले सब्जियों की नर्सरी तैयार करते हैं फिर उसको हम दूसरी जगह मेन खेत में लगा सकते हैं।
0: सब्जियों को किस तरीके से लगा सकते हैं?
1: जी सर, सबसे पहले हम ध्यान रखते हैं कि ऐसी फसलें जिनके बीज बहुत छोटे होते हैं, जैसे टमाटर, मिर्ची, भटे, इनकी जो पौध होती है वो हम पहले नर्सरी में या बोल सकते हैं प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर में हम तैयार कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि अभी हमारे खेत तैयार नहीं है, तो फसल तैयार नर्सरी तैयार होने में भी लगभग 30 दिन का समय लगता है, तो चूंकि हमारे पास 30 दिन एक्स्ट्रा हैं, उनका हम कहीं छोटी जगह में पौध तैयार करें और खेत का अपन प्रबंधन साथ साथ में करते रहें, और जैसे ही हमको मौसम 1 या 2 दिन का खुला दिखे और जैसे ही हमारी सीडलिंग 20 दिन से ऊपर की हो जाए, मतलब यह उसकी हाइट जो होती है लंबाई वो 10 सेंटीमीटर से लेके 18 सेंटीमीटर के बीच में हो, उस टाइम हमें रोपाई के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। तो हम खेतों में अपना जिस दिन खुला समय मिले उसी दिन हम खेत में रोपाई की क्रिया को करें।
0: जी। और रुपाई की क्रिया की अगर बात करें तो हम किस तरीके से रुपाई, चूंकि एक विधि रहती है रुपाई की, तो कौन सी ऐसी
1: जी
0: विधि
1: सर,
0: है, कितनी दूरी पे उसको लगाना चाहिए?
1: जी सर, जैसे हम अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग दूरी तय की गई है मीटर के हिसाब से, क्योंकि अभी क्या है कि बरसात का मौसम है तो ज्यादा बारिश की वजह से खरपतवार की भी संख्या ज्यादा बढ़ती है खेतों में, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम फसलों की थोड़ा दूरी होती है वो एक लाइन मेथड में हम करें, क्योंकि पौधे से पौधे और

लाइन से लाइन की दूरी बराबर हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें क्या होता है कृषि क्रिया करने में आसानी रहती है। जैसे टमाटर के लिए हम जनरली 60x60 पे लगाते हैं, मिर्ची पे हम 60x45 cm² पे हम पौधे को रोपण कर सकते हैं, और भट्टे में भी हम 60x60 cm² पे हम भट्टे को रोपण कर सकते हैं।

0: वो भी आधी मात्रा का,
1: जी
0: जिससे क्या है कि हम इसको टॉप ड्रेसिंग रूम में या बुवाई के साथ साथ बेसल डोज के रूम में आधार खरपतवार आधार उर्वरक के रूप में हम उसको पौधों के साथ में ही दे सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। तो और इस खास तौर पर बरसात के मौसम में किसान साथियों किस तरीके से देखभाल करना चाहिए?
0: जी सर बिल्कुल। अभी क्या होगा, जैसे जैसे खरपतवार ज्यादा आएंगे तो खेतों में क्या होगा, अभी मौसम कीड़े भी ज्यादा आएंगे, उसके साथ साथ बीमारियों की संख्या भी बढ़ेगी। अब चूंकि हम सबसे पहले अभी सीजन चल रहा है सोलनेसियस वेजिटेबल का, जैसे टमाटर मिर्ची भटे और भिंडी, अब इनमें होता क्या है कि सर सबसे ज्यादा फ्रूट बोरर और अभी पत्तियों पे आपको लीफ कर्ल वायरस दिखेगा, तो ये क्या होता है जैसे मौसम ठंडा होता है तो इनका अटैक बढ़ जाता है। तो इनको रोकने के लिए हम समय समय पे या तो बीज को उपचारित करते रहना चाहिए, और यदि आपकी खेत में ट्रांसप्लांटिंग हो गई है तो हम इसके लिए समय समय पे हम M45 का स्प्रे कर सकते हैं हम।
1: बिल्कुल। और जिन किसान साथियों की सब्जी, चूंकि कुछ कुछ किसान साथियों की बची हुई है सब्जियां, तो उसमें खास तौर पर अभी देखा जा रहा है कि बहुत सारी बीमारी फैल रही हैं और बहुत सारी सड़न हो रही है, मतलब सड़ रही हैं सब्जियां, तो क्या करना चाहिए उन किसान साथियों?
0: बिल्कुल सर, अभी क्या है जैसे सर ने बताया कि खेतों में पानी की ज्यादा होने की वजह से सब्जियां की रूट गलन और पत्तियों में सड़न पैदा हो रही है, जिसको हम पीथियम पेंडिडर्मेटम एक बीमारी होती है फंगस के थ्रू ये फैलता है, तो हम इसको उपचार के लिए हम समय समय पर कार्बन डाइऑक्सीक्लोराइड COC जिसको हम बोलते हैं, जिसका 1% सोल्यूशन और साथ में ही हम मैनकोजेब या M45 का 1% सोल्यूशन हम समय समय पर 7 दिन के अंतराल पर 2 से 3 स्प्रे कर दें, तो इससे तुरंत उस डिसीज को आप रोक सकते हैं या प्रबंधन कर सकते हैं हम उसका।
1: जी जी जी, बहुत बढ़िया जानकारी। और साथ साथ में हमारे किसान साथियों को ये भी जानकारी दीजिएगा कि जिन किसान साथियों ने खेती चूंकि नहीं कर पाई है, वो आगे चलकर किस तरीके से खेतों की अपनी तैयारी कर सकें।
0: बिल्कुल सर, जैसा कि अभी हम रेनी सीजन या खरीफ में हम थोड़ा सा लेट हो गए वो भी बरसात की वजह से, तो हमारे जो आने वाला जो सीजन है वो खरीफ का होगा, क्योंकि खरीफ में सब्जियों का उत्पादन सबसे अधिक होता है भारत में, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम खेत को प्री प्लान तैयार करें और हम अगेती फसलें जैसे फूल गोभी के पत्ता गोभी और इसी के साथ साथ हम टमाटर को भी फिर से ले सकते हैं खेतों में, और साथ साथ में अभी धनिया का उत्पादन बहुत अच्छा मिलेगा आपको अगले सीजन में।
1: एक चीज और जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपसे कि चूंकि भिंडी भी हमारे किसान साथी लगाए भी हैं, क्या करना चाहिए उन किसान साथियों को?
0: जी सर, जैसा कि हमने बताया था कि इसके अलावा भी भिंडी एक महत्वपूर्ण फसल है इस सीजन के लिए, क्योंकि उसकी ट्रांसप्लांटिंग नहीं होती है, तो उसके लिए किसान भाइयों को जो बीज है वो आपको वायरल फ्री बीज अभी मार्केट में उपलब्ध है, बहुत सारी उसकी वैरायटियां हैं, तो हम उसको ले सकते हैं, जैसे हम बात करें अरका नाम का वैरायटी की या पूसा भिंडी 5 की या आपका पूसा मखमली वैरायटी की या काशी लालमा वैरायटी, ये भिंडी में सर्वोत्तम उत्पादन के साथ साथ ये वायरस फ्री वैरायटी भी है, जो चूंकि भिंडी के उत्पादन को बढ़ाती हैं और ये जल्दी से जल्दी इसमें पिकिंग आ जाती है बाकी भिंडी की वैरायटी की अपेक्षा।
1: जी जी जी। और कितने दिनों में मतलब सब्जी हमने तैयार हो जाती है?
0: भिंडी क्या है सर, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है, मतलब ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, अगर भिंडी को ट्रांसप्लांटिंग लगाने के तुरंत 45 दिन बाद हम इसकी पहली पिकिंग खेत में ले सकते हैं, और ये पूरी जो फसल का ड्यूरेशन है वो 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है आपका, तो चूंकि जो मौसम की वजह से ड्यूरेशन छोटा रह गया उसमें आप पूरी फसल भिंडी की ले सकते हैं।
1: बिल्कुल सर, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से दी। आशा करते हैं कि हमारे किसान साथियों को ये जानकारी जो हमारे खेत कल्याण कार्यक्रम में दी जा रही है वो बेहद उनके लिए फायदेमंद भी होगी और हमारे किसान साथियों के लिए एक नई पद्धति के रूप में अपने किसान साथी अपने खेतों में लगा सकते हैं, सब्जियां उगा सकते हैं, ताकि उनकी आजीविका को बढ़ा सके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।
0: धन्यवाद सर, धन्यवाद किसान भाइयों।

जब तक हम विभिन्न प्रकार की पद्धतियों को नहीं अपनाएंगे, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति से अगर हम अपनी खेती को करते हैं तो जाहिर सी बात है कि मुनाफा हमारे किसान साथियों को अधिक होगा, और हमें वैज्ञानिक पद्धति से बात करनी चाहिए और खेती भी करनी चाहिए। साथ साथ में जो सरकार की ओर से योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो स्प्रिंकलर को लेकर, ड्रिप को लेकर, तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो उसका भी हमारे किसान साथियों को लाभ लेना चाहिए। हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत कल्याण कार्यक्रम से जाने का। कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं हमारे इस नंबर पे। नंबर है हमारा 92-19-20-77-49, या फिर चिट्ठी के माध्यम से आज आप भेजना चाहते हैं तो पत्र विहार का पता है, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम ओरछा तिगला के पास ओरछा। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति और चल चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से भजन को। नमस्कार।

बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। और अभी आपने डॉक्टर देवेंद्र जी को सुना, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने सब्जियों को लेकर दी है कि किस तरीके से हमारे किसान साथी तैयारी कर सकते हैं, कौन सी वैरायटी है जो अपने खेतों में वो लगा सकते हैं, कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इबेरा अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम आसपास। दोस्तों, आज आसपास कार्यक्रम में अपन सुने एक सामाजिक कवर स्टोरी को। और दोस्तों, एक के संगे संगे पहला सुन लेते एक बढ़िया से गीत को, और गीत के बाद फिर सुने अपन ये स्टोरी को। सो दोस्तों, आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

तपन सबजरन ने सुनो और ये गीत को आनंद लाओ है। दोस्तों ये गीत को गा रहे थे अमोल अहरवाल जी और राजकुमार त्यागी जी। अब दोस्तों ये गीत के बाद अपन कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, कार्यक्रम में सुनाते हैं एक बढ़िया सी सामाजिक स्टोरी को। सो दोस्तों आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। नमस्कार दोस्तों, आप हैं ये वक्त अपने दोस्त माता दीन के संग में। दोस्तों आइए सुनते हैं एक लघु कथा, कहां गया शिवलिंग। एक साधु महाराज तीर्थ यात्रा करने निकले, साथ में उनके पास जितना भी धन था उसको भी ले गए, क्योंकि उनका कोई ठिकाना तो था नहीं। जब वह इस धन को सुरक्षित रखते तीर्थ यात्रा करते करते वह गंगा के किनारे पहुंचे। गंगा के किनारे बहुत भारी भीड़ थी। साधु महाराज को गंगा स्नान करना था, परंतु उन्हें अपने धन की चिंता सताने लगी। इतनी भीड़ में यदि अपने धन को गंगा के किनारे छोड़ते हैं तो उसे चोरी होने का डर है। उनके मन में एक उपाय आया और उन्होंने एक ऐसी जगह ढूंढी जिस तरफ किसी का ध्यान नहीं था। गंगा के किनारे रेत ही रेत थी। साधु महाराज ने उस रेत में अपना धन दबा दिया और उसके ऊपर एक शिवलिंग बना दिया, जिससे उन्हें जगह की पहचान बनी रही। इसके बाद साधु महाराज निश्चिंत होकर स्नान करने चले गए, परंतु जब वह स्नान करके वापस आए तो उन्होंने देखा उस स्थान पर असंख्य शिवलिंग बने हुए थे और साधु महाराज किंकर्तव्य मूड रह गए कि अब इस विशाल शिवलिंग समूह में वो शिवलिंग कहां से ढूंढे जिसके नीचे उनका धन छुपा है। वह अपना सिर पीटते रह गए। लोगों ने बिना सोचे समझे रेत पर शिवलिंग बना दिए। सोचा होगा कि यह भी एक प्रथा है, ऐसा ही है यह संसार। लोग धर्म के नाम पर बिना सोचे समझे अंधानुकरण करते हैं, चाहे उससे किसी का अहित ही क्यों ना हो। इसे ही कहते हैं गतानुगति को लोकः। दोस्तों इस लघु कथा की लेखिका थी सविता शर्मा नोएडा से, और दोस्तों इसको आवाज और म्यूजिक से सजाया है आपके रेडियो साथी माता दीन कुशवाहा जी ने।

देखो दोस्तों, जापान सब्जन ने स्टोरी सुनी और ई स्टोरी से अपन को कछु सीख सोले ने। अब दोस्तों एक के संगे संगे बिलादरी से अपन ई स्टोरी को सुनने हैं। आप और कह रही है कि माता दिन भैया मनोरंजन को बिल्कुल ध्यान नहीं कर रहे। जी हाँ दोस्तों, मनोरंजन के लाने हमें आप सब्जन को ध्यान है। सो मनोरंजन में सुना थे अपन एक बढ़िया से गीत को, लेते गीत को आनंद।

दोस्तों, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। देखो साथियों, कितनो प्यारो जो गीत अपन सब जन ने सुनो है और ये गीत को आनंद लो है। ये गीत को गा रहे थे भैया राकेश कुमार पांडे जी। अब दोस्तों ये गीत के संगे हम आप सब जन को जो बता देवे कि आज के ये कार्यक्रम से आपके दोस्त माता दीन जी को जावे को समय हो गया है। सो हमें दो ई कार्यक्रम से जावे की अनुमति, अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात यही कार्यक्रम में यही बेरा पे। सो जब तक के लाने नमस्कार।